0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए श्रोताओं, करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है गांव गणेश धाम परसुली जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी जी ने। लिखते हैं,
2: मन शांत हो तो हर कठिन परिस्थिति भी एक नई और महत्वपूर्ण सीख बन जाती है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू और शिवम साहू लिखते हैं,
1: सादर नमस्कार, ये मेरा प्रशंसा पत्र है। उमंग कार्यक्रम का मैं नियमित श्रोता हूँ, इससे हमारा भरपूर मनोरंजन तो होता ही है, हमें सीख और प्रेरणा भी मिलती है। बेहतरीन प्रस्तुति के लिए पूरे टीम को हार्दिक बधाई और धन्यवाद।
2: भट्टीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू।
1: और ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत, परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी।
2: रानी गांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू, शुभम और सेजल साहू।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आपके संदेशों के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। तो हमारा पहला प्रश्न था आपसे कि दक्षिण अमेरिका के उस फल का नाम बताइए जिसे मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था।
2: इसका उत्तर जान लेते हैं साथियों, कोकोवा या कोको फल का मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था।
1: और हमारा दूसरा प्रश्न था कि चिपको आंदोलन की शुरुआत मूल रूप से किस गांव से हुई थी।
2: तो श्रोताओं, इसका उत्तर है चिपको आंदोलन की शुरुआत मूल रूप से राजस्थान के खेजडली गांव से हुई थी।
1: और फिर हमने आपसे पूछा था कि जापान की कोदामा परंपरा में विशेषकर पुराने पेड़ों को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, ऐसा क्यों?
2: उत्तर है साथियों, जापान की कोदामा परंपरा में विशेषकर पुराने पेड़ों को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, क्योंकि इन्हें जीवात्मा माना जाता है। ये ऐसे वृक्ष होते हैं जो जंगल के दूसरे पेड़ पौधों का भी पोषण करते हैं।
1: और हमारा अगला सवाल बड़ा मजेदार था। हमारा सवाल था श्रोताओं, यदि कोई स्वार्थवश जंगल में लकड़ी काटने जाए तो जंगल का रक्षक लेशी उनके साथ क्या करता है?
2: उसका उत्तर है साथियों, लेशी उन्हें जंगल में भटका देता है।
1: जी, और हमारा अंतिम प्रश्न था आपसे कि खासी समुदाय के बुजुर्गों और ग्राम प्रधानों का जवानों और बच्चों को जंगल के बारे में दिया जाने वाला मूल संदेश क्या है?
2: खासी समुदाय के बुजुर्गों और ग्राम प्रधानों का संदेश है, जंगल हमारा नहीं है, हम बस इसके रखवाले हैं।
1: तो श्रोताओं, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। और अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, राष्ट्रगान जन गण मन को संगीतबद्ध किसने किया था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: राष्ट्रगान जन गण मन को संगीतबद्ध किसने किया था?
1: श्रोताओं, आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर या हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर भेज सकते हैं। हमारा निवेदन ये भी है कि इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को ताज़ा तरीन जानकारी के लिए जरूर फॉलो करें।
2: जी, और आपको बता दें कि अब NCERT की कक्षा 9 तक की नई पाठ्य पुस्तकें किसी भी सर्च इंजन द्वारा NCERT की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती हैं। टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF।
1: और यदि आप इन पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।
2: जी,
1: वहाँ आप हमारे शैक्षिक कार्यक्रम भी जब चाहें सुन सकते हैं। और अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, शीर्षक है दिस इज माई टाउन।
2: अंग्रेजी की कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक में मुद्रित कविता को संगीत रूप में प्रस्तुत करते हुए ये कार्यक्रम नगर की बनावट, साफ सफाई और कूड़ा निपटान समेत स्वच्छ पर्यावरण बनाए रखने का संदेश देता है।

0: नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत सभी के लिए शिक्षा को बढ़ावा देते हुए NCERT असाक्षर लोगों को साक्षर बनाने के क्रम में कार्य कर रहा है। और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। अगले कार्यक्रम का शीर्षक है जगमगाता गांव।
1: इस कार्यक्रम में संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन के जीवन का एक प्रेरक प्रसंग लिया गया है और विशेष रूप से ये संदेश दिया गया है कि हमें अपने विचारों को कर्म में भी प्रकट करना चाहिए, अन्यथा उनका कोई मूल्य नहीं है।
2: साथियों, आज हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो आपको जरूर प्रोत्साहित करेगी। ये घटना अमेरिका की है।
3: ये बात उन दिनों की है जब अमेरिका संयुक्त राज्य नहीं बना था। दरअसल ये कई देशों की कॉलोनी थी। उस जगह के मूल निवासी आदिवासी थे, जिन्हें रेड इंडियंस भी कहा जाता था। आगे चलकर जब सभी राज्यों का एकीकरण हुआ तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका बना। ये वही अमेरिका है जिसे इतालवी नाविक क्रिस्टोफर कोलंबस ने खोजा था और इसे नई दुनिया का नाम दिया था।
2: कोलंबस निकले तो थे भारत को खोजने, लेकिन पहुंच गए अमेरिका। तो आइए मित्रों, इस जानकारी के साथ अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ये 17वीं शताब्दी के आरंभ का काल था। उन दिनों आज की तरह आधुनिक सुविधाएं नहीं थी।
3: मोटरगाड़ी, टेलीफोन, चलचित्र, समाचार पत्र कुछ भी नहीं था। यातायात के साधन नहीं के बराबर थे और लोग आवागमन के लिए या तो पैदल चलते या पशुओं का इस्तेमाल करते थे।
2: बिजली भी नहीं थी, इसलिए रात को लोगों को यात्रा करने में बड़ी परेशानी होती थी। जो सड़कें थीं, वे भी खस्ता हाल थीं। बारिश के समय वहां बड़े बड़े गड्ढे बन जाया करते थे और उनकी मरम्मत करने

0: वाले नहीं के बराबर थे, और तो और अधिकांश सड़कें कच्ची ही थीं।
1: इन कारणों से वहां दुर्घटनाओं का होना आम बात थी। रात के अंधकार में यात्रा करने वाले मुसाफिर और मुख्य रूप से व्यापारी अक्सर दुर्घटनाओं का शिकार होते थे। हर रोज कोई न कोई ऐसी घटना होती ही रहती थी।
0: ज्यादातर व्यापारी ही इन दुर्घटनाओं का शिकार इसलिए होते थे क्योंकि उन्हें अपना सामान लेकर सुबह सुबह मंडियों में पहुंचना होता था, और इसलिए उन्हें रात भर सफर करना पड़ता था।
1: अमेरिका के वर्जीनिया प्रांत में एक गांव था, नाम था पोप्स क्रीक। इसी गांव में एक बालक रहता था। उसके गांव में भी इस तरह की दुर्घटनाओं का होना आम बात थी। जब कोई भी उस गांव से रात को गुजरते हुए दुर्घटना का शिकार होता तो उस बालक को बहुत दुख होता।
0: लेकिन किया ही क्या जा सकता था, उसे कोई समाधान दिखाई नहीं पड़ता था। उसने अपने गांव के बड़े लोगों से बात भी की, लेकिन सबने हंसकर टाल दिया। लोग उस बच्चे का मजाक भी उड़ाते थे। उसके पिताजी अक्सर अपने व्यवसाय के कारण बाहर ही रहते थे।
1: लेकिन वो बच्चा इस समस्या के समाधान के लिए लगातार सोचता रहता। एक दिन की बात है, उसने अपनी माँ से कहा।
2: माँ।
3: हाँ बेटा।
2: मुझे बहुत बुरा लगता है जब रोज हमारे घर के सामने दुर्घटना होती है। कोई ना कोई रोज हमारे घर के सामने गड्ढों में गिरता है।
3: हाँ बेटा, पर ये कोई नई बात तो है नहीं।
2: हाँ पर
3: देखो, ऐसी दुर्घटनाएं तो पूरे गांव में हो रही हैं और दूसरे गांव में भी होती हैं।
2: पर माँ हमारे
3: लेकिन बेटा, इसमें भला हम क्या कर सकते हैं? सड़कें खराब हैं और अंधकार भी तो है, तो दुर्घटनाएं तो होंगी ना बेटा।
2: जरा सोचो ना माँ, लोग इसी तरह दुर्घटनाओं का शिकार होते रहते हैं, क्या हम चुप्पी साधे बैठे रहेंगे?
3: अच्छा अच्छा ठीक है बेटा, अब तुम जाओ और अपनी पढ़ाई करो, मेरे पास बहुत काम है, मुझे जाने दो।
2: लेकिन माँ सुनो ना।
3: अरे बेटा मैंने कहा।
2: अरे सुनो, उफ माँ।
3: अरे बेटा मेरे पास बहुत काम है, मुझे जाने दो।
2: माँ कोई सुनता भी तो नहीं है, मुझे इस समस्या के हल के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, लेकिन क्या करूं?
1: साथियों, उस बच्चे ने हार नहीं मानी और अपने पिता से भी बात की। उसने गांव के बड़ों से भी बात की, लेकिन कोई हल नहीं निकला।
0: वो बच्चा लगातार सोचता रहता कि क्या किया जा सकता है, लेकिन कोई उपाय नजर नहीं आ रहा था। एक दिन की बात है, शाम हो गई थी और रात्रि भोजन का समय हो गया था। सब डिनर करने बैठे थे।
3: लो बेटा। अरे क्या बात है बेटा, तुम तो कुछ खा ही नहीं रहे हो। बताओ बताओ क्या सोच रहे हो?
2: हाँ माँ, मैं बहुत दिनों से सोच रहा हूँ। बेशक बहुत बड़ा समाधान तो नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हम कुछ तो कर ही सकते हैं।
3: कुछ कर सकते हैं? भाई क्या समाधान है? देखो, बड़े बड़ों से कुछ नहीं हुआ और तुम करोगे।
2: हाँ माँ। माँ कैसा रहेगा यदि हम अपने घर के बाहर एक लैंप रख दें या लालटेन टांग दें?
3: बेटा जॉर्ज, तुम कैसी बातें करते हो? लालटेन टांग दें, इससे क्या होगा भला?
2: माँ मुझे दे दीजिए ना एक लालटेन।
3: बेटा
2: मैं जल्दी लालटेन को घर के बाहर लटका दूंगा।
3: अरे इस छोटी सी लालटेन से क्या होगा? क्या दुर्घटनाएं रुक जाएंगी? सारा गाँव इस बात पर हंसी उड़ाएगा हमारी।
2: हंसने दो ना माँ, हम लोगों को यूं ही चोट खाने के लिए नहीं छोड़ सकते। मैं मानता हूँ कि सारी दुर्घटनाएं नहीं रुकेंगी, लेकिन
3: लेकिन क्या बेटा?
2: कम से कम हमारे घर के सामने तो दुर्घटना होनी कम हो जाएगी ना। लालटेन से लोगों को रास्ता दिख जाएगा और वे बच जाएंगे। लाओ मुझे एक लालटेन दे दो। माँ दे दो ना। माँ दे दो।
3: अरे बेटा सुनो तो।
2: माँ एक लालटेन दे दो।
3: देखो बेटा, इससे कुछ नहीं होगा। और तुम लालटेन उठाकर, अरे तुम,
2: अरे माँ लालटेन दे दो।
3: अरे लालटेन लेके कहाँ जा रहे हो? अरे बेटा रुको तो सही। ओहो सुनो तो। देखो ये बच्चा मानता ही नहीं है। ठीक है जैसा तुम सोचो।

0: एक दो दिन के लिए ऐसा करने में हर्ज ही क्या है। करके देखता हूँ कहाँ रखूँ, कौन सी जगह, यही ठीक रहेगा। कुछ नहीं करने से कुछ करना तो अच्छा है।
1: साथियों, उस बालक का नाम था जॉर्ज। उसने जलती हुई लालटेन उठाई और घर के बाहर लटका दी। वो देखना चाहता था कि इसका क्या असर होता है। रात भर वो जागता रहा।
2: सुखद आश्चर्य, व्यापारियों और यात्रियों का झुंड वहां से गुजरता रहा, लेकिन उस रात उसके घर के आगे कोई दुर्घटना नहीं हुई।
1: सुबह वो बच्चा भागा भागा माँ के पास पहुँचा।
0: मामा, माँ।
3: अरे अरे, बड़ी खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है?
0: देखा आपने रात को लालटेन टांगने का असर? मैं तो सारी रात जागता रहा।
3: क्या क्या कह रहे हो तुम? क्या वहाँ पे एक भी दुर्घटना नहीं हुई?
0: नहीं माँ, एक भी नहीं।
3: अच्छा, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा कि हमारे घर के सामने किसी को चोट नहीं लगी। तुमने बहुत अच्छा काम किया बेटा।
0: मैं कहता था ना माँ, कुछ नहीं करने से कुछ करना अच्छा है। अब तो मैं गांव के लोगों को भी ये बात बताऊंगा।
3: हाँ, ये जरूर करना, तुम सबको बताना।
0: हाँ माँ,
3: बहुत अच्छा काम किया बेटा, मैं तो विश्वास ही नहीं करती थी। बहुत अच्छा।
1: तो साथियों, जॉर्ज को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसकी माँ को भी बात समझ में आने लगी थी। उन्हें लगा कि यदि हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो इतना तो कर ही सकते हैं कि कम से कम हम अपने घर के बाहर होने वाली दुर्घटनाओं को तो कम कर ही सकते हैं। कुछ लोगों ने उनकी हंसी जरूर उड़ाई, लेकिन उन्होंने अब रोज रात को लालटेन टांगना शुरू कर दिया।
2: उन्हें बहुत अच्छा लगा जब कई राहगीरों ने रात को उनके घर का दरवाजा खटखटाया और इस बात के लिए उन्हें धन्यवाद दिया।
1: धीरे धीरे ये चर्चा सारे गांव में होने लगी और लगभग सभी लोगों ने अपने अपने घर के सामने लैंप या लालटेन रखना शुरू कर दिया और परिणाम ये हुआ कि दुर्घटनाएं होनी बिल्कुल बंद हो गईं।
2: राहगीर जब दूर से आते तो उन्हें उस गांव को जगमगाता देखकर बड़ी प्रसन्नता होती। अब तो दूर दूर तक इस गाँव की चर्चा होने लगी और लोगों ने इस गाँव का नाम रखा द विलेज ऑफ लाइट्स।
1: विलेज ऑफ लाइट्स यानी जगमगाता गांव। साथियों, देखा आपने कैसे एक बालक की सोच और इच्छा शक्ति ने सारी परिस्थिति बदल दी। धीरे धीरे आसपास के गांव के लोगों ने भी ऐसा ही करना शुरू किया और वो क्षेत्र दुर्घटना मुक्त हो गया। इसी बात से प्रेरणा लेकर बाद में सड़कों के किनारे तेल के लैंप पोस्ट लगने शुरू हो गए।
2: हमें कभी नहीं सोचना चाहिए कि यदि कोई कुछ नहीं कर रहा है तो हम भी क्यों करें। कोई करे या ना करे, यदि हम कुछ अच्छा कर सकते हैं तो हमें जरूर करना चाहिए, और वो भी पूरी लगन से, जैसा कि उस बालक ने किया।
1: साथियों, वो बालक जॉर्ज कोई और नहीं, उसका नाम था जॉर्ज वॉशिंगटन, जो आगे चलकर अमेरिका के संस्थापक और प्रथम राष्ट्रपति बने।
2: जी हाँ साथियों, आप ये ना देखें कि कोई क्या कर रहा है या क्या कर सकता है, आप ये देखें कि आप क्या कर सकते हैं। यदि आप परिवर्तन चाहते हैं तो सबसे पहले वो परिवर्तन आप स्वयं बनिए।
4: अभी आपने सुना ये कार्यक्रम।

0: जादुई पिटारा, है ना मजेदार साथियों? जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
2: और अब सुनते हैं कार्यक्रम
0: भाई मट्टू और घड़ी।
3: एक दिन का जिक्र है, भाई मट्टू खेलते खेलते बावर्ची खाने में घुस गए। वहां दीवार पर घड़ी लगी थी, बस देखते ही उछल पड़े, सीधे चट्टू के पास भागे। इतने तेज कि बस कुछ पूछो मत। चट्टू के पास पहुंचे तो सांस फूला हुआ था, मुंह से आवाज नहीं निकलती थी। मट्टू बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाल कर बोले,
4: अरे चट्टू, वो दीवार पर टंगी है बावर्ची खाने में, और भाई बहुत ही खूबसूरत है।
5: आखिर क्या चीज?
4: घड़ी। घड़ी और क्या, और इसमें कुछ लटक भी तो रहा है, जाने क्या है, इधर आता है उधर जाता है, बस हिलता रहता है और ऐसे बोलता है जैसे टिक टिक टिक टिक। सुनो सुनो, आ रही आवाज।
3: चट्टू भाई ने थोड़ी देर आवाज की तरफ कान लगाए और बोले,
5: हाँ भैया, आ तो रही है।
3: इतना कहकर वो भी बावर्ची खाने की तरफ बहुत तेजी से भागे कि जरा एक नजर देख लें। वहां पहुंचकर बोले,
5: अरे भैया, ये तो पेंडुलम है। पेंडुलम, वही जिसे मास्टर साहब उस दिन रक्कास कह रहे थे। आहा भाई, ये तो बड़ा अच्छा झूला है।
3: चट्टू भाई झट से उस पर कूद कर चढ़ गए। अब मट्टू भाई को कहां ताप थी, उन्होंने भी एक छलांग लगाई और झूले पर सवार हो गए। चट्टू भाई बोले,
5: भैया टिल्लू, खिल्लू और जग्गू मग्गू को भी बुला लाएं।
3: मट्टू बोले,
4: हाँ हाँ जरूर।
3: दोनों उतरे और थोड़ी देर में अपने साथ फौज की फौज ले आए।
4: देखो, ये है वो झूला, मगर अब सूरत क्या हो। अच्छा यूं करें कि दो दो करके बारी बारी झूलें। पहले हम झूलेंगे, हमारा हक पहला है, हमी ने तो इसका पता लगाया है।
3: मगर वो चारों पांचों अकड़ने लगे।
5: वाह साहब वाह, पहले हम झूलेंगे, तुम अपनी बारी ले चुके, और जाने कितना झूल चुके हो।
3: अभी ये बहस हो रही थी कि घड़ी की सुई ठीक 12 के हिंसे पर आ गई। अचानक एक खटके के साथ छोटा दरवाजा खुला, उसमें से एक खूबसूरत सी चिड़िया बाहर आई।

0: మరి ఇది ఇవాల్టి గుర్తుకొస్తున్నాయి. మీ అందరికీ నచ్చిందని ఆశిస్తూ మీ రేడియోని ఇస్తాం పద్మిని. ఆకాశవాణి వివిధ భారతి కేంద్రం స్టూడియో క్లాక్ లో సమయం 12 గంటలు కావస్తోంది. మరికొద్ది క్షణాల్లో ఢిల్లీ కేంద్రం నుండి వార్తలు వింటారు. తిరిగి 12:05 చైతన్య స్ఫూర్తిలో కలుద్దాం. వింటూనే ఉండండి ఆకాశవాణి వివిధ భారతి.
1: ఆకాశవాణి సమాచార్ కి సాథ్ మై కనకలతా. दिल्ली उच्च न्यायालय में आज 7 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई. इसके साथ ही उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या बढ़कर 50 हो गई है. मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय ने न्यायमूर्ति निवेदिता अनिल शर्मा, निशा सहाय सक्सेना, संजय शर्मा, भरत पराशर, अदिति चौधरी, दिनेश भट्ट और अरुण भारद्वाज को पद की शपथ दिलाई. ये सभी दिल्ली के जिला न्यायपालिका में न्यायिक अधिकारी के रूप में कार्यरत थे. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगी. वे कल एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी.
2: सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष ये पुरस्कार फीचर फिल्मों, नॉन फीचर फिल्मों और सिनेमा पर लेखन के क्षेत्र में रचनात्मक और तकनीकी उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं. 72वें संस्करण के पुरस्कार विजेताओं की घोषणा 18 जुलाई 2026 को 3 जूरी के अध्यक्षों ने की थी. इन पुरस्कारों को 3 मुख्य श्रेणियों, फीचर फिल्में, नॉन फीचर फिल्में और सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन में बांटा गया है. साथ ही इसमें भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी शामिल. समाचार कक्ष से जया भारती.
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे. वे ब्रह्म कुमारीज के विश्व नवीनीकरण के लिए आध्यात्मिक जागृति अभियान का शुभारंभ और वडोदरा में ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस ध्यान केंद्र का उद्घाटन भी करेंगे. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि बाजार में आने वाली या इस्तेमाल होने वाली दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं की निगरानी, मूल्यांकन और रोकथाम में भारत की यात्रा आत्मनिर्भरता का एक उल्लेखनीय उदाहरण है. नई दिल्ली में नेशनल फार्मुलरी ऑफ इंडिया के 7वें संस्करण को जारी करते हुए उन्होंने ये बात कही. सुश्री पटेल ने बताया कि देश में दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं की निगरानी के लिए फिलहाल 1100 से अधिक केंद्र कार्यरत हैं और सरकार का उद्देश्य इनकी संख्या प्राथमिक स्वास्थ्य इकाइयों के स्तर तक ले जाने का है. सुश्री पटेल ने लोगों से खुद दवाएं न लेने और डॉक्टरों की सलाह लेने की अपील की है. उन्होंने कहा कि अचानक किसी दवा का दुष्प्रभाव होने पर उसे नजरअंदाज न करें.

0: सखी सहेली
1: हमारे सभी सुनने वालों को नमस्कार। चंचल वर्मा का और हम स्वागत करते हैं सखी सहेली कार्यक्रम में हमारे सभी श्रोताओं का, सखियों का, सखाओं का। और नमस्कार नेहा आपको भी।
2: नमस्कार चंचल जी आपको और सभी सुनने वालों को भी। नेहा शर्मा का नमस्कार।
1: तो आज इस मंच पर बहुत दिन बाद हम मिले हैं और बताते हैं कि आज किन विषयों पर हम मिलजुल कर बात करने वाले हैं अपने सुनने वालों के साथ।
2: हाँ, ये आपने सही कह दिया कि सुनने वालों के साथ किन विषयों पर बात करने वाले, क्योंकि हम तो आपस में बहुत सारे विषयों पर बात करने वाले हैं। लेकिन आज कथा सुधा में बड़े भाई साहब, जो मुंशी प्रेमचंद की कहानी है, उसका दूसरा भाग हम सुनने वाले हैं।
1: तो बिल्कुल हम इस बात को नहीं भूले हैं कि पहला भाग सुन चुके हैं सुनने वाले और दूसरा भाग सुनेंगे। तो भूलने से मुझे याद आया कि भूलने की जो धीरे धीरे शुरुआत होती है, आगे चलकर ये एक बीमारी में भी तब्दील हो सकती है। तो इसके शुरुआती लक्षण जब हो तभी से पहचान लेना चाहिए, यानी कि हम बात कर रहे हैं अल्जाइमर या डिमेंशिया, इस तरह की बीमारियों की। और आज विश्व अल्जाइमर दिवस है, इस पर कुछ बातचीत होगी।
2: बिल्कुल, और अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस भी है, तो इस पर भी हम बात करने वाले हैं। और मन में शांति बनी रहती जब अच्छा खाना खाने मिले, तो इसलिए प्रादेशिक व्यंजनों में आज हम लाए हैं कश्मीरी व्यंजन हाक साग और ल्योदूर चमन।
1: तो ये हाक साग जो है ना, कुछ कुछ पालक से मिलता जुलता साग होता है, लेकिन बनाने की विधि सबकी थोड़ी अलग होती है। तो हमारे श्रोता वो हमें भेज रहे हैं इसकी रेसिपीज, वो हम बाद में सुनेंगे और पढ़ेंगे इसे, लेकिन पहले गीत सुन लेते हैं।
2: हाँ।

0: ये बहुत सुंदर गाना था ना।
1: हम्म,
0: और बहुत दिन बाद जब ऐसा गाना सुनते हैं ना तो पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। बहुत दिन पहले गाना मैंने सुना था और कहते हैं ना कि हम भूले नहीं इस गाने को,
1: जी
0: और आज याद आई तो हमने लगा दिया।
1: तो बहुत ही अच्छा काम किया आपने, हमें भी याद दिला दिया जो हम तो भूल ही चुके थे इस गाने को, या
0: देखो,
1: कहें कि हमें तो पता नहीं था इसके बारे में।
0: और क्या होता है जब कोई ये सब किश्तों में सुनते हैं ना, इनकी एक भाग सुना ना सुना दूसरा, तो वो अधूरापन सा रह जाता है। इसी तरह
1: हाँ
0: से अब कोई कहानी है, आधी सुन ली हो आधी ना सुने, तो वो बड़ी उत्सुकता रहती है जानने की कि आगे क्या होगा। तो कथा सुधा में जिन्होंने ये कहानी पहले सुनी है, बड़े भाई साहब पहला भाग, तो
1: जी
0: उन्हें उत्सुकता है इसका दूसरा भाग सुनने की। तो देर नहीं लगाते हैं, सुनवा देते हैं कहानी।
1: जी
2: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
3: कथा सुधा में आइए आज सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी बड़े भाई साहब। आज सुनते हैं इस कहानी का दूसरा भाग। पिछले भाग में आपने सुना,
4: अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्माभिमान भी बढ़ा। भाई साहब का वो रोब मुझ पर न रहा, आजादी से खेल कूद में शरीक होने लगा। दिल मजबूत था, अगर उन्होंने फिर मेरी फजीहत की तो साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया। मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। जवाब से ये हेकड़ी जताने का साहस न होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर

0: होता था कि भाई साहब का वो आतंक अब मुझ पर नहीं है। भाई साहब ने इसे भांप लिया। उनकी ससहमत बुद्धि बड़ी तीव्र थी और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े।
1: देखता हूं इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए तो तुम्हें दिमाग हो गया, मगर भाईजान घमंड तो बड़े बड़ों का नहीं रहा, तुम्हारी क्या हस्ती है। महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं, असल चीज है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। मेरे दर्जे में आओगे लाला तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे, तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। इस दर्जे में अव्वल आ गए हो तो जमीन पर पांव नहीं रखते, इसलिए मेरा कहना मानिए, लाख फेल हो गया हूं लेकिन तुमसे बड़ा हूं। संसार का मुझे तुमसे ज्यादा अनुभव है, जो कुछ कहता हूं उसे गिरह बांधिए, नहीं पछताएंगे।
0: स्कूल का समय निकट था, नहीं ईश्वर जाने ये उपदेश माला कब समाप्त होती। भोजन आज मुझे निस्वाद सा लग रहा था। जब पास होने पर भी ये तिरस्कार हो रहा है तो फेल हो जाने पर तो शायद प्राण ही ले लिए जाएं। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था उसने मुझे भयभीत कर दिया। कैसे स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यही ताज्जुब है।
2: आइए अब सुनते हैं आगे की कहानी।
0: लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों में मेरी अरुचि ज्यों की त्यों बनी रही। खेल कूद का कोई अवसर हाथ से न जाने देता। पढ़ता भी था मगर बहुत कम, बस इतना कि रोज का टास्क पूरा हो जाए और दर्जे में जलील ना होना पड़े। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वो फिर से लुप्त हो गया और फिर चोरों का सा जीवन कटने लगा। फिर सालाना इम्तिहान हुआ और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर से पास हो गया और भाई साहब फिर फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत न की पर न जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया। मुझे खुद अचरज हुआ। भाई साहब ने प्राणांतक परिश्रम किया था, कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे। 10 बजे रात तक इधर, 4 बजे भोर से उभर, 6 से 9:30 तक स्कूल जाने के पहले मुद्रा कांतिहीन हो गई थी, मगर बेचारे फेल हो गए। मुझे उन पर दया आती थी। नतीजा सुनाया गया तो वो रो पड़े और मैं भी रोने लगा। अपने पास होने वाली खुशी आधी हो गई। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख ना होता, लेकिन विधि की बात कौन डाले। मैं और भाई साहब के बीच में अब केवल एक दर्जे का अंतर और रह गया। मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई कि कहीं भाई साहब एक साल और फेल हो जाएं तो मैं उनके बराबर हो जाऊं। फिर वो किस आधार पर मेरी फजीहत कर सकेंगे। लेकिन मैंने इस कमीने विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल दिया। आखिर वो मेरे हित के विचार से ही तो डांटते हैं। मुझे उस समय अप्रिय लगता है अवश्य, मगर ये शायद उनके उपदेशों का ही असर हो कि मैं दनादन पास हो जाता हूं और इतने अच्छे नंबरों से। अब की भाई साहब बहुत कुछ नरम पड़ गए थे। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। शायद वो खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा, या रहा तो बहुत कम। मेरी स्वच्छंदता भी बढ़ी। मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं तो पास ही हो जाऊंगा, पढ़ूं या न पढ़ूं मेरी तकदीर बलवान है, इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वो भी बंद हुआ। मुझे कनकौवे उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया था और अब सारा समय पतंगबाजी की ही भेंट होता था। फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था और उनकी नजर बचाकर कनकौवे उड़ाता था। मांझा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारियां आदि समस्याएं अब गुप्त रूप से हल की जाती थीं।

0: भाई साहब को ये संदेह न करने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नजरों में कम हो गया है। एक दिन संध्या समय हॉस्टल से दूर मैं कनकौवा लूटने बेतहाशा दौड़ रहा था। आंखें आसमान की ओर थीं और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चला जा रहा था, मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। बालकों की एक पूरी सेना लग्गे और झड़दार बांस लिए उनका स्वागत करने को दौड़ी आ रही थी। किसी को अपने आगे पीछे की खबर न थी। सभी मानो उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे, जहां सब कुछ समतल है, न मोटर कारें हैं, न ट्राम, न गाड़ियां। सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई, जो शायद बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने वहीं मेरा हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले,
1: अरे रे रे, इन बाजारी लौंडों के साथ धेले के कनकौवे के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इसका कुछ भी लिहाज नहीं कि अब नीचे जमात में नहीं हो, बल्कि 8वीं जमात में आ गए हो और मुझसे केवल एक दर्जा नीचे हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। एक जमाना था कि लोग 8वां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे। मैं कितने ही मिडलचियों को जानता हूं जो अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुपरिंटेंडेंट है। कितने ही 8वीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक हैं। बड़े बड़े विद्वान उनकी मातहती में काम करते हैं और तुम उसी 8वीं दर्जे में आकर बाजारी लौंडों के साथ कनकौओं के लिए दौड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी कम अकली पर दुख होता है। तुम जहीन हो, इसमें शक नहीं, लेकिन वो जहन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले? तुम अपने दिल में समझते होगे, मैं भाई साहब से महज एक दर्जा नीचे हूं और अब उन्हें मुझे कुछ कहने का हक नहीं है। लेकिन ये तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं और चाहे आज तुम मेरी जमात में आ जाओ और परीक्षकों का यही हाल है तो निसंदेह अगले साल तुम मेरे समकक्ष हो जाओगे। शायद 1 साल बाद तुम मुझसे आगे निकल जाओ। लेकिन मुझ में और तुम में जो 5 साल का अंतर है, उसे तुम क्या, खुदा भी नहीं मिटा सकता। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं और हमेशा रहूंगा। मुझे दुनिया का और जिंदगी का तजर्बा है। चाहे तुम एमए, डीफिल और डीलिट ही क्यों ना हो जाओ, समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा पास नहीं किया और दादा भी शायद 5वीं जमात के आगे नहीं पढ़ पाए। लेकिन हम दोनों चाहे दुनिया की विद्या पढ़ लें, अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। केवल इसलिए नहीं कि वो हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे ज्यादा तजर्बा है और रहेगा। अमेरिका में किस तरह की राज्य व्यवस्था है और 8वें हेनरी ने कितने विवाह किए और आकाश में कितने नक्षत्र हैं, ये बातें चाहे उन्हें ना मालूम हो, लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे ज्यादा है। देव ना करे आज मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे। दादा को तार देने के सिवा तुम्हें कुछ ना सूझेगा। लेकिन तुम्हारी जगह दादा हो तो किसी को तार ना दे, न घबराएं, न बदहवास हो। पहले खुद मरज पहचान कर इलाज करेंगे, उसमें सफल ना हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज है, हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर कैसे चले। जो दादा भेजते हैं उसे हम 20-22 तक खर्च कर डालते हैं और पैसे पैसे को मोहताज हो जाते हैं। नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी और नाई से मुंह चुराने लगते हैं। लेकिन आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं उससे आधे में दादा ने अपनी उम्र का बड़ा भाग इज्जत और नेक नामी के साथ कमाया है और कुटुंब का पालन किया, जिसमें सब मिलाकर 9 आदमी थे। अपने हेडमास्टर साहब को ही देखो, एमए है कि नहीं, यहाँ के एमए नहीं,

0: ऑक्सफोर्ड के 1,000 रुपया पाते हैं, लेकिन उनके घर इंतजाम करता कौन है? उनकी बूढ़ी माँ। हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ बेकार हो गई। पहले खुद घर का इंतजाम करते थे, खर्चा पूरा ना पड़ता, कर्जदार रहते थे। जब से उनकी माताजी ने प्रबंध अपने हाथ में लिया है, जैसे घर में लक्ष्मी आ गई हो। तो भाईजान, ये जरूर दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो और स्वतंत्र हो। मेरे देखते तुम बेराह नहीं चल पाओगे। अगर तुम यो ना मानोगे तो मैं थप्पड़ का भी प्रयोग कर सकता हूं। मैं जानता हूं कि तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही हैं।
1: मैं उनकी इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ और भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। मैंने सजल आंखों से कहा, जी हरगिज नहीं, आप जो कुछ फरमा रहे हैं वो बिल्कुल सच है और आपको कहने का अधिकार है। भाई साहब ने मुझे गले लगा लिया और बोले,
0: कनकवे उड़ाने को मन नहीं करता, मेरा जी भी ललचाता है, लेकिन क्या करूं, खुद बेराह चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं? ये कर्तव्य भी तो मेरे सिर पर है।
1: संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकौवा हमारे ऊपर से गुजरा। उसकी डोर लटक रही थी। लड़कों का एक झुंड पीछे दौड़ा चला आता था। भाई साहब तो लंबे हैं ही, उछलकर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़े। मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था।
2: कथा सुधा में आज आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी बड़े भाई साहब। आज आपने सुना इस कहानी का दूसरा भाग। पात्र परिचय इस प्रकार है, छोटे भाई जयंत पात्रिकर, बड़े भाई साहब जी श्याम, संकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी, प्रस्तुति अनुश्री पाठक।

0: नेहा, अभी हम सुन रहे थे कथा सुता में बड़े भाई साहब कहानी का दूसरा भाग, और आज विश्व अल्जाइमर दिवस है
1: जी।
0: तो हमारे सुनने वाले भी बताएं कि क्या उनके परिवार में ऐसे कोई लोग हैं जो चीजों को भूल जाते हैं और वो उनकी इस चीज को देखा अनदेखा कर रहे हैं। हमारी सखियां अक्सर कई बार अपनी चीजों के साथ में बहुत चीजों को हल्के में लेती हैं,
1: हाँ।
0: और जब हल्के में हम चीजों को लेते हैं तो आगे चलकर वो कोई बड़ी गंभीर समस्या हो सकती है। तो अपने अनुभव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। फिलहाल हम सुन लें एक गीत
1: जी।

नेहा, अभी हमने सुना सीआईडी फिल्म का गाना, जिसमें आवाजें थी आशा भोसले, मोहम्मद रफी और शमशाद बेगम की, और घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि कार्यक्रम में अभी समय है एक छोटे से अंतराल का।

0: अगर आप देखें कि ब्रेन स्ट्रोक ज्यादा कॉमन है या ब्रेन हेमरेज, 100 में से 85% अभी भी ऐसे हैं जो ब्रेन स्ट्रोक होते हैं, 15% पेशेंट को एक्चुअली ब्रेन हेमरेज होता है।
1: कैसे पहचाने ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण?
0: ब्रेन के राइट साइड में ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है तो पेशेंट का धीरे धीरे बायां हाथ पैर जो है वो काम करना बंद कर देता है।
1: सिर दर्द कब बन जाता है जिंदगी का दर्द? इन तमाम सवालों से जुड़ी जानकारियां देंगे न्यूरो सर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र।
0: ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा जो धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो गया, तो जहाँ से पैर की नस ब्रेन में शुरू होने वाली है, अगर वो ब्रेन ही आपका श्रिंक होते जा रहे हैं तो उसमें से धीरे धीरे ट्रेमर्स आने लगते हैं।
1: सुनिए सेहतनामा 21 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा और कार्यक्रम चल रहा है
3: सखी सहेली। और हमें तो याद है ये सारी चीजें, और हमें ये भी याद है कि आज विश्व अल्जाइमर दिवस है और हर साल 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य है कि अल्जाइमर और डिमेंशिया जैसी जो भूलने की बीमारियां हैं, इनके बारे में लोगों को जागरूक करें और इससे जुड़े जो डर हैं उन्हें खत्म किया जाए।
2: बिल्कुल, कोई भी बीमारी या समस्या उसके नाम से ना डर सबसे पहले आ जाता है। तो ये जागरूक हो जाएं लोग और उसे डरे नहीं, उसका उपचार कैसे करना है और इस चीज से हम कैसे बच सकते हैं इसके बारे में जानना बहुत जरूरी होती है। और 1994 में इस दिन की शुरुआत हो गई थी। अल्जाइमर डिजीज इंटरनेशनल यानी कि ADI नामक एक संस्था है, उसने अपनी 10वीं वर्षगांठ पर पहली बार इस दिन को मनाया। 2012 से पूरे सितंबर महीने को ही वर्ल्ड अल्जाइमर मंथ के रूप में भी हम मनाते हैं।
3: हाँ, और अल्जाइमर या डिमेंशिया का सबसे आम प्रकार है अल्जाइमर जो है। WHO के अनुसार दुनिया में करीब 55 मिलियन से ज्यादा लोग डिमेंशिया से पीड़ित हैं और इसमें लगभग 60-70% मामले अल्जाइमर के ही हैं। और एक बात के तौर पर अगर हम बताएं तो हर साल लगभग 1 करोड़ नए मामले इसके सामने आते हैं। और इस समस्या को सामने आने पर दिमाग में बीटा एमिलॉइड प्रोटीन जमा होने से दिमाग की कोशिकाएं नष्ट होने लगती हैं और इसका ही नतीजा होता है कि याददाश्त और सोचने समझने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे कम होने लगती है।
2: बिल्कुल, और ये महिलाओं के साथ में मैंने भी जो हमारे जो मिलने जुलने वाले हैं, अड़ोसी पड़ोसी हैं, घर के ही महिलाएं हैं, कईयों से सुना है कि धीरे धीरे ना चीजें वो भूलने लगती हैं, लेकिन इन चीजों को अगर हल्के में ले लेंगी तो वो समस्या बड़ा रूप ना ले। इसीलिए इसके बारे में चेत जाना पहले से जरूरी होता है। और जब हम ये दिन मनाते हैं जागरूकता के लिए तो हर साल कोई ना कोई एक थीम भी होती है, और इस साल जो थीम रखी गई है वो है द अर्लियर यू नो द मोर यू कैन डू डिमेंशिया डायग्नोस मैटर्स। इसका मतलब है कि जितना जल्दी आपको पता लगेगा उतना जल्दी आप कर पाएंगे। और ये थीम नेहा इसलिए भी रखी गई है क्योंकि इस साल इस बात पर फोकस किया जा रहा है कि समस्या का निदान जल्दी होने पर इसका इलाज, देखभाल और सहयोग सही समय पर जो भी पीड़ित है उनको मिल सके।
3: और वाकई अगर किसी शुरुआती लक्षण में ही जब हम पहचान लेते हैं तो जल्दी आसानी से हम उसका इलाज भी करवा सकते हैं। तो जैसे ही कोई शुरुआती लक्षण दिखाई दे तो नजरअंदाज न करें, जैसे कि हाल में ही बातें बार बार आप भूलने की आपको ऐसी आदत नजर आ रही, रोज के काम करने में भी अगर दिक्कत आने लगे, समय और जगह को लेकर अगर भ्रम होने लगे, या बोलने में सही शब्द आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या बोलना चाहते हैं, या आपका मूड और व्यवहार अचानक बदल रहा है, तो इस तरह की जो

0: लक्षण है। मतलब आमतौर पे हम छोटी मोटी चीजें भूलते
1: जी
0: हैं जो कि आम है, लेकिन कुछ ऐसा भूल जाना कि आपने कभी तुरंत ही वो किया है,
1: यस
0: किस
1: बिल्कुल
0: जगह
1: ऐसा
0: हैं
1: आपने।
0: आप, अगर ऐसा आप हो रहा है तो फिर आपको इस पर ध्यान देना बहुत
1: और कई
0: जरूरी है।
1: बार किसी चिर परिचित को हम जानते हैं लेकिन उसका चेहरा याद है, हम उसे पुकारना चाहते हैं लेकिन उसका नाम हमें याद नहीं आ रहा होता है।
0: हाँ
1: हमें कोई चीज किसी से मंगवानी है कि भाई वो चीज हमें लाकर दे दो, लेकिन उस चीज का हमें नाम याद नहीं आता है। आपको अगर पेन मंगाना है, कोई किताब मंगानी है,
0: हाँ
1: तो आपके सामने उसकी छवि पूरी है लेकिन आप सामने वाले को बयां नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसका नाम आपके जहन में नहीं होता।
0: हाँ
1: तो यही इस तरह के लक्षण होते हैं। और भारत में हम देखें तो लगभग 53 लाख लोग डिमेंशिया से पीड़ित हैं, और पहले गांवों में इसे बुढ़ापे की समस्या समझकर लोग
0: हाँ
1: नजरअंदाज करते थे, समय है, उम्र बढ़ रहा है तो ये चीजें होना लाजमी है, लेकिन इस बारे में लोग धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं। और वैसे तो कहना चाहिए कि पूरा कोई पक्का इलाज है नहीं इस समस्या का, लेकिन स्वस्थ जीवन शैली अगर हम अपनाते हैं तो इसके जोखिम को हम धीरे धीरे कम कर सकते हैं।
0: हाँ जैसे कि हम रोजाना अगर व्यायाम करते हैं या योग करते हैं, संतुलित आहार लेते हैं, धूम्रपान और मदिरा पान से दूर होते हैं, सामाजिक मेलजोल ज्यादा बढ़ाते हैं, दिमागी कसरत की चीजें होती है जैसे किताबें पढ़ना या वर्ग पहेलियां जो आती हैं, अलग अलग तरह की पहेलियां हल करना, तो ये सारे उपाय हम कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त हम कर सकते हैं, अगर ब्लड प्रेशर की शिकायत है या डायबिटीज है या कोलेस्ट्रॉल है, तो इन्हें कंट्रोल में रखने की भी हम अगर कोशिश करते हैं तो इससे भी बहुत फायदा होता है। साथ ही अगर हम अच्छी नींद लेते हैं और अपने तनाव को कम करते हैं तो ये भी हमारे लिए फायदेमंद होता है।
1: बिल्कुल। और हम कह सकते हैं कि ये जो दिन हम मना रहे हैं इसका संदेश भी यही है कि भूलने को उम्र का कोई सामान्य हिस्सा नहीं समझे कि
0: जी
1: भाई उम्र बढ़ रही है तो ये समस्या आनी ही है, ऐसा नहीं है। इसकी जल्दी अगर पहचान कर लेते हैं, सही जानकारी हो इसकी, तो परिवार का प्यार अगर हमें मिलता है तो वही इसकी सबसे बड़ी दवा है।
0: बिल्कुल। और हमारे एक
1: और
0: साथी ने लिखा है कि विश्व अल्जाइमर दिवस की शुरुआत 21 सितंबर 1994 को एडिनबर्ग में अल्जाइमर डिजीज इंटरनेशनल ADI की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर की गई थी। और आगे उन्होंने बताया कि नामकरण इस मानसिक बीमारी का नाम जर्मन मनोचिकित्सक और न्यूरोपैथोलॉजिस्ट एलोइस अल्जाइमर के नाम पर रखा गया, जिन्होंने 1901 में पहली बार एक महिला में इस विकार की खोज की थी।
1: इसी तरह से एक और संदेश हमारे पास आया है। इस संदेश में लिखा गया है कि आज अंतर्राष्ट्रीय अच्छा ये तो शांति दिवस के बारे में, तो जब शांति
0: हाँ
1: की बात करेंगे तब इसके बारे में पढ़ेंगे।
0: बिल्कुल। अभी तो हमने अल्जाइमर के बारे में बात की, और भूलने की जो समस्या है अक्सर तब भी आने लगती है जब हम ज्यादा
1: जी
0: ध्यान नहीं देते
1: तो देखियो ना, मैं भी भूल
0: हैं।
1: गई कि हम बात कर रहे थे अल्जाइमर डे के बारे में
0: जी
1: और शांति दिवस का संदेश मैं पहले पढ़ने लगी, तो ये भूल ना हो पहले गाना सुन लेते हैं।
0: बिल्कुल।

0: तो भाई बहुत शांति है ना अभी स्टूडियो में समय।
1: हाँ, और ये गाना अगर ऐसे गाने सुने तो मन में कितनी शांति लगती भी है, और एक अच्छा मौका भी है शांति का, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस है आज, और 21 सितंबर को हर साल पूरी दुनिया में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा समर्पित ये दिन है, जिसका एक ही संदेश है कि युद्ध को नहीं, शांति को चुनो।
0: बिल्कुल सही बात है।
1: और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का कहना है कि शांति एक बेहतर भविष्य के लिए सबसे शक्तिशाली ताकत है, और ये हमारी पहुंच में है अगर हम इसे चुनते हैं तब।
0: बिल्कुल, यानी कि अगर हम क्रोध नफरत को चुनना चाहें तो उसे भी चुन सकते हैं,
1: हाँ
0: लेकिन अगर एक बेटर और बेहतर ऑप्शन की तरफ हम जाते हैं, एक अच्छा विकल्प हम चुनते हैं, तो वो
1: हाँ
0: शांति ही हो सकता है। और 1981 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिवस की स्थापना की। 2001 में महासभा ने सर्वसम्मति से 21 सितंबर को वैश्विक युद्ध विराम और अहिंसा के दिन के रूप में इसे घोषित किया। इस दिन सभी देशों और वहां के जो रहने वाले लोग हैं उनसे हम ये अपील करते हैं कि 24 घंटों के लिए ही सही, लेकिन इस चीज को, यानी कि जो हिंसा है, उसे रोकने की
1: हाँ
0: कोशिश वो जरूर करें, अपने आप से जो कोशिश उनसे हो सकती है।
1: हाँ और जैसे कि हमने बताया कि हर वर्ष कोई थीम होती है हर दिवस
0: हाँ
1: की, तो इस वर्ष की शांति दिवस की थीम है एक्ट नाउ फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड, यानी कि अगर आपको शांति प्रिय एक विश्व चाहिए तो उसके लिए अभी प्रयासरत होना होगा।
0: जी
1: और ये थीम याद दिलाती है कि शांति अपने आप नहीं आती, इससे बनाना पड़ता है, साहस, समझौते और कार्रवाई से।
0: और ये कार्यवाही भी हमें ही करनी होती है, कोई और आके ये काम नहीं करेगा। और शांति का मतलब केवल युद्ध को रोकना या युद्ध नहीं करना ये नहीं होता,
1: हाँ
0: इसका अर्थ है कि न्याय, समानता, मानवों के अधिकार, सबका सम्मान, ये सब चीजें होनी जरूरी हैं। और इसीलिए विश्व शांति का महत्व, इसको अगर हम समझेंगे तो सबका सहयोग और सबका योगदान होना बहुत ही जरूरी है।
1: बिल्कुल, क्योंकि अगर हम सब मिलकर ये काम नहीं करेंगे, कोई भी काम अगर सब मिलकर करते हैं तो ही सफलता हासिल हो सकती है। और संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विकास और शांति एक दूसरे से जुड़े हैं। दुनिया के 10 सबसे कम विकसित देशों में से ज्यादातर किसी न किसी संघर्ष से जूझ रहे हैं, तो जहां शांति होती है वहां परिवार जुड़ते हैं, समुदाय फिर से बनते हैं, और बच्चे पढ़ लिख पाते हैं, खेल पाते हैं।
0: और जब बच्चे पढ़ेंगे, लिखेंगे, खेलेंगे, तभी तो उस देश का भविष्य जो है वो उज्जवल बनेगा।
1: जी
0: और इस दिन जो है, यानी कि आज की हम बात कर रहे हैं विश्व शांति दिवस की, अंतर्राष्ट्रीय विश्व शांति दिवस की, तो इस दिन न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय है वहां पर पीस बेल, यानी कि शांति का घंटा, वो बजाया जाता है।
1: जी
0: और ये घंटा दुनिया भर के लोगों द्वारा जो दान किए गए सिक्के हैं या पदक हैं उनसे बनाया गया है। इसके अलावा दुनिया भर में शांति दिवस पर शांति मार्च, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, स्कूलों में वाद विवाद प्रतियोगिताएं होती हैं, अंतर धार्मिक संवाद आयोजित किए जाते हैं, और बहुत सारे लोग तो इस तरह से जो सफेद कबूतर होता है ना,
1: हाँ
0: शांति का प्रतीक माना
1: जी
0: जाता है, उन्हें भी उड़ाते हैं।
1: और संयुक्त राष्ट्र का मानना है कि शांति हम सबका काम है। नफरत से भरे शब्द ना बोलें, अपने आसपास सम्मान की भाषा बोलें, सबको समान भाव से देखें, फर्जी खबरें

0: होती है उन्हें फैलाने से रोकें। और शांति का मतलब कोई बड़ी बड़ी बातें करना नहीं है चंचल जी, क्योंकि छोटे छोटे रोज के अगर हम कदम उठाते हैं तो उससे ही हम शांति स्थापित कर सकते हैं। जैसे दूसरे को सुन लें, दूसरे को समझें, और कोई हिंसा अगर करता भी तो उसका जवाब हिंसा से ना दें, उन्हें समझने की कोशिश करें, उन्हें समझाएं किसी तरह से। अगर वो
1: जी,
0: मान जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है।
1: तो आपने कहा दूसरों को सुने
0: हाँ
1: समझें, तो भाई हमारे श्रोता क्या कह रहे हैं उनकी बात भी सुन लेते हैं।
0: बिल्कुल
1: उनका कहना है कि आज अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस है और लगता है इसीलिए मेरा ऑफिस जाने से पहले तक सखी सहेली यानी मेरी धर्म पत्नी शांति बनाए रखी हैं और मेरी क्लास लेते हुए लेक्चर उन्होंने नहीं दिया है। काश हर रोज अलग अलग शांति दिवस हो।
0: हमें तो लगता है कि इन्होंने भी हमारी सखी को तंग करने का कुछ आज प्रयास नहीं किया होगा,
1: जी
0: इसी वजह से ये शांति बनी हुई है। क्योंकि जब कहते हैं कि एक कार्य क्रिया की प्रतिक्रिया होती है ना, तो वो
1: बिल्कुल सही कहा
0: प्रतिक्रिया
1: आपने
0: नहीं आई क्योंकि क्रिया शायद नहीं हुई है आज, तो
1: जी।
0: ऐसा वो भी बनाए रखे शांति ऐसा हम कहते हैं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि सखी सहेली कार्यक्रम के रोचक विषयों को पढ़ा तो पता चला अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस है, मगर हमारे घर में आज सुबह से ही बर्तन बजने शुरू हो गए। देखिए प्रतिक्रिया हो रही है
1: जी
0: क्रिया की, और वो कह रहे हैं कि मेरी धर्म पत्नी और मेरी सुबह सुबह ही दूध लेने जाने की बहस शुरू हो गई। मैं मस्त था, सुरीला सफर कार्यक्रम के संभावित शब्दों से गीत सोचने में बड़ा व्यस्त था। घर में दूध न होने के कारण चाय नाश्ते में देरी हो रही थी। शांति दिवस के मौके पर हम दोनों पति पत्नी ने घर में वो अशांति फैलाई कि बच्चे भी देख देख कर हंस रहे थे। बच्चों को हंसता देख मैंने पत्नी के सामने सरेंडर किया, डोलची उठाई और चुपचाप से दूध लेने चला गया। दूध आने के बाद फिर सबने हंसी खुशी चाय नाश्ता किया और अशांत हुआ घर का वातावरण एक बार फिर से शांति वाले माहौल में तब्दील हो गया। तो आप सबको हमारी ओर से एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की शुभकामनाएं और ढेरों बधाई।
1: हम भी सबको शुभकामनाएं देते हैं और
0: जी
1: ऐसा हंसी खुशी का वातावरण सभी के घर में बना रहे। सुनते हैं ये गीत।

0: चंचल जी, मैं भी ये सोच रही थी कमेंट पढ़ते हुए कि हमारे साथी ने कहा कि वो दूध की वजह से जो लड़ाई हुई उसमें उन्होंने देखिए हमारा नाम भी साथ में लिया। उन्होंने कहा कि विविध भारती की जो सुरीला सफर की जो पोस्ट आई थी उसकी वजह से वो गाने सोच रहे थे और नहीं जा रहे थे ना, तो हम तो ये कह रहे कि रास्ते में भी सोचते सोचते जा सकते थे, है कि
1: बिल्कुल
0: नहीं?
1: सही बात है। आप जब जा रहे हैं दूध लेने तो
0: हाँ
1: रास्ते भर उन शब्दों को अपने जहन में रखते हुए जाइए, और जब आ जाएंगे तो इत्मीनान से वो सारे गाने लिखकर आप पोस्ट पर डाल सकते हैं।
0: हाँ
1: चलिए फिलहाल हम बात करते हैं ल्योदुर चमन की, जो कि एक कश्मीरी व्यंजन है।
0: हाँ
1: और ल्योदुर चमन का मतलब होता है ल्योदुर मतलब होता है पीला, और चमन का मतलब होता है पनीर। और इस रेसिपी की खास बात यही होती है कि इसमें प्याज, लहसुन, टमाटर, हरी मिर्च इन चीजों का इस्तेमाल नहीं किया जाता, इनकी बहुत ही साफ सुथरी, कहते हैं ना कि मीठी सी रेसिपी होगी जिसमें तीखापन ज्यादा नहीं
0: कुछ भी
1: होता।
0: नहीं डालते मसाले, कुछ नहीं डाल रही, क्या बात है भाई।
1: इसमें जो ग्रेवी है वो दूध, सौंफ, सौंठ इस तरह के मसालों से बनाई जाती है। तो सामग्री इसके लिए चाहिए 300 से 400 ग्राम मोटे चौकोर टुकड़ों में कटा हुआ पनीर, और 1.5 से 2 कप फुल फैट वाला दूध, यानी कि जिसमें मलाई होती है वैसा
0: मलाई
1: वाला
0: जी
1: दूध। सरसों का तेल चाहिए 3 से 4 बड़े चम्मच, वो चाहिए हमें पनीर तलने के लिए और ग्रेवी के लिए। हल्दी पाउडर 1 छोटा चम्मच, सौंफ पाउडर 2 छोटे चम्मच, सौंठ पाउडर 1 छोटा चम्मच, हींग चाहिए 1/4 छोटा सा चम्मच, स्याह जीरा चाहिए 1/2 छोटा चम्मच, खड़े मसाले में 1 दालचीनी का टुकड़ा, और 2 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 2-3 लौंग और नमक स्वाद के अनुसार। अब पनीर को पानी में उबालने और भिगोने के लिए पानी चाहिए, पनीर को उबालने के लिए और भिगोने के लिए थोड़ी सी कसूरी मेथी चाहिए, यानी कि 1 छोटा चम्मच। अब इसे बनाने के लिए पनीर को तैयार करना है। एक बड़े बर्तन में पानी को उबालें, उसमें 1/2 चम्मच हल्दी और थोड़ा सा नमक डालें। पनीर के टुकड़ों को इसमें डालकर 2 मिनट के लिए छोड़ दें, फिर पानी से निकालकर सुखा लेना है। अब
0: जी
1: एक कढ़ाई में सरसों का तेल तब तक गर्म करना है जब तक उसमें से अच्छा सा धुआं ना निकलने लगे। आंच को धीमा करके पनीर के टुकड़ों को दोनों तरफ से हल्का सुनहरा होने तक तल लेना है। तले हुए पनीर के टुकड़ों को कढ़ाई से निकालकर तुरंत एक बर्तन में जिसमें गुनगुना नमक वाला पानी हो उसमें डाल देना है। ऐसा करने से पनीर रबड़ की तरह खिंचा हुआ नहीं होता बल्कि नरम और स्पंजी रहता है।
0: ओके
1: और ग्रेवी का तड़का तैयार करने के लिए कढ़ाई में बचे जो तेल बच गया है उसी को थोड़ा सा गर्म करना है, और इसमें अगर कम लगे तो आप तेल और छोड़ दीजिए। और इसमें जीरा, हींग, दालचीनी, लौंग, हरी इलायची, बड़ी इलायची ये सारे मसाले एक साथ डाल देने। कुछ सेकंड जब ये मसाले चटकने लगेंगे और इसमें इनकी खुशबू आने लगेगी तब आंच को धीमा करना है, गैस बंद कर देनी है। इसमें हल्दी पाउडर, सौंठ पाउडर और सौंफ पाउडर डालना है, सूखे मसाले ना जलें। इसके लिए तुरंत इसमें 2 से 3 चम्मच पानी भी डाल देना है।
0: जी
1: दूध को अब इसमें थोड़ा सा मसाले डालने के बाद में दूध डालना है, और जब दूध डालेंगे तो कलछी से लगातार चलाते रहना ताकि दूध वो फट ना जाए। और जब दूध में अच्छा सा उबाल आने लगे तो स्वाद अनुसार नमक डालना है। जो भीगा हुआ पनीर था उसको हाथों से निचोड़ कर इस उबलती हुई ग्रेवी में डाल देना है, और कढ़ाई को ढक देना है। धीमी आंच पर 10 से 12 मिनट तक इसे पकने देना है। पनीर जब सभी ग्रेवी के साथ में सारे स्वाद को सोख लेगा और ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी, घी या तेल जो भी है वो सतह पर तैलने लगेगा, तो ऊपर से 1 चम्मच हल्का सा है तो घी डाल देना है, या मलाई डाल सकते हैं आप, और थोड़ी सी कसूरी मेथी डालकर फिर गैस बंद कर दीजिए, और गर्मा गर्म ल्योदुर चमन जो है वो तैयार हो जाएगा इस तरह से।
0: थोड़ी भीनी भीनी से खुशबू रहेगी इसमें ऐसा लगता है ना। और एक हाक साग के बारे में भी आपने बताया था, तो हाक साग को अगर हम बताएं तो कश्मीर का सबसे पसंदीदा और रोजमर्रा के खाने में बनने वाला पारंपरिक व्यंजन है। तो कश्मीरी कोलार्ड ग्रीन्स या हरी पत्तियों का एक साग होता है जो वहां मिलता है, और इसके बहुत ही कम मसालों के साथ इसे भी पकाया जाता है ताकि साग का जो स्वाद है वो बना रहे। इसके लिए हाक की पत्तियां, सरसों का तेल, हींग, सूखी लाल मिर्च और नमक, बस इतना ही चाहिए। और इसमें लहसुन और प्याज का इस्तेमाल जैसे कि आपने कहा इसमें भी नहीं होता है। ये इसका स्वाद हल्का तीखा और बेहद ताजा होता है, तो आमतौर पर इसमें उबले हुए चावल के साथ इसे परोसते हैं और ऐसे खाया जाता है इसे। लेकिन इसको मतलब बस सब्जियों को इसी तरह से बनाया जाता है। सब्जी को आप हल्का सा तोड़कर या काटकर आप इस तरह से छोंक दीजिए, छोटे जो थोड़ी सी जो हमने सामग्री ली है
1: जी
0: उसमें आप इसको छोंक दीजिए और बस वो बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। और बस ऐसे कह सकते हैं कि पहले वो जो पनीर की सब्जी है जिसका नाम मैं तो भूल चुकी
1: ल्योदुर
0: हूँ जी,
1: चमन
0: ल्योदुर चमन और हाक साग बड़ी आसानी से बन जाता है। ये भी जैसे हम भाजी बनाते हैं ना, जो ताजी
1: जी
0: सब्जियां जिस तरह से थोड़े से मसालों के
1: हाँ
0: साथ में ऐसा डाल के उसी तरह से इसे पका लिया जाता है। और बस इन सब के साथ में चावल बनाइए और खाइए, आनंद लीजिए।
1: बिल्कुल, आप रोटी के साथ भी खा सकती हैं, और गर्मा गर्मी सब्जियां बड़ी अच्छी लगती हैं, और क्या होता है ना कि कई बार बहुत तेल मसाले वाला या लहसुन प्याज का कुछ खाने का मन ना हो तो इस तरह की हल्की फुल्की सब्जियां सभी बनाकर खा सकते हैं।

0: चंचल जी, हमारे एक साथी ने लिखा कि उन्हें मेरे पति को भूलने की बीमारी की शुरुआत हो गई है। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा अभी कुछ ज्यादा नहीं है, बढ़ती उम्र में होता है, कुछ एक्सरसाइज और रोजमर्रा के काम नियम करने से बताया है। मैं भी कुछ चीजें रखकर भूल जाती हूँ, किसी समय याद आ जाता है, किसी का नाम या जगह के नाम भी वो भूलती हैं, ऐसा कह रही हैं। तो
1: तो बस
0: अपना
1: आप समय
0: ख्याल
1: पर
0: रखें।
1: उपचार करिए, ध्यान रखिए अपना, और अभी कार्यक्रम का समय पूरा हो चला है तो हम लेते हैं इजाजत। सभी को चंचल वर्मा
0: और नेहा शर्मा का
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: दोस्तों नमस्कार, सेहतनामा में आज सुनते हैं न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अजीत मिश्र से ममता सिंह की बातचीत।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं आज का सेहतनामा कार्यक्रम। और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है मुंबई के न्यूरो सर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र को। डॉक्टर अजीत, विविध भारती के स्टूडियो में आपका हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार।
2: नमस्कार ममता जी, थैंक यू विविध भारती मुझे यहाँ बुलाने के लिए। यहाँ मुझे बोलने का मौका मिला, मेरी आवाज इतने लोगों तक नॉट ओनली इन मुंबई बल्कि पूरे भारत में पहुंचेगी ऐसा मैंने सोचा नहीं था। कम उम्र में आपने हमें इसका मौका दिया, उसके लिए थैंक यू।
1: तो नॉस्टैल्जिया फील हो रहा है?
2: उम्मीद नहीं किया था कि 40 के पहले मैं यहाँ जाके लोगों से अपना जो भी नॉलेज या जो भी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ उसके बारे में, जो भी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट होता है मतलब किसी भी बीमारी को कैसे रोका जाए उस बारे में बात करूं, ये सोचा था। बट सोचा था 60-70 की उम्र में इसके बारे में लोगों से बात करूंगा।
1: अच्छा,
2: तो इसके लिए आपने मुझे मौका दिया, सबसे पहले उसके लिए विविध भारती को धन्यवाद देना चाहूंगा।
1: धन्यवाद आपको कि आप आए और आपने कहा कि बहुत उम्र के बाद आपको मौका मिलता है, लेकिन दरअसल ये दौर बदल रहा है, तकनीक का जमाना है और मेडिकल साइंस ने बहुत प्रगति की है और बीमारियों ने भी खूब प्रगति की है। बीमारियां नए नए रूप में नए नए नाम के साथ हाजिर हो जाती हैं और समझ में नहीं आता कि मरीज क्या करें, कैसे करें, कब करें। अभी डॉक्टर अजीत, इन दिनों एक बड़ी बीमारी है लेकिन कॉमन हो गई है, वो है ब्रेन स्ट्रोक। जिसको सुनो तो पता चला कि हम फलाना हॉस्पिटल में एडमिट था, क्या हुआ? ब्रेन स्ट्रोक। तो ये ब्रेन स्ट्रोक है क्या और क्यों बढ़ रहा है?
2: तो दो चीजें, एक तो बीमारी है क्या और दूसरा जो हम सुन रहे हैं कि इसके नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, तो एक्चुअली सही भी है। ब्रेन स्ट्रोक, अगर मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूं ब्रेन स्ट्रोक होता क्या है, दो प्रकार के स्ट्रोक हैं। एक होता है जिसमें उम्र के हिसाब से जितना ब्रेन में ब्लड जाना चाहिए तो अगर वो ब्लड नहीं पहुंच पाए तो ब्रेन का वो हिस्सा काम करना बंद कर देता है, ये एक्चुअल स्ट्रोक है। दूसरा एक होता है जिसमें इतना ज्यादा ब्लड जा रहा है, ब्रेन में खून की नस फट गई है, तो ऐसे लेमैन मतलब आम आदमी उसको भी स्ट्रोक बोलता है, बट मेडिकल भाषा में उसका एक्चुअल मीनिंग होता है ब्रेन हेमरेज। तो उसका मुख्य कारण है बीपी बढ़ जाना, बहुत स्ट्रेस है, पहले से बीपी की दवाई चल रही थी, पेशेंट ने खाना बंद कर दिया, कुछ झगड़ा हुआ, टेंशन आया, बीपी बढ़ने के कारण जो नस फटी तो उसके कारण जो खून है वो अंदर ब्रेन के अंदर फट गया पूरा, उसको बोलते हैं ब्रेन हेमरेज। जैसा आपने सेकंड सवाल पूछा क्या इसका एक्चुअल इंसिडेंस बढ़ते जा रहा है, आंसर इज येस। ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक, मैं जब बचपन में जब डॉक्टर नहीं था तो हमारे हिसाब से ब्रेन स्ट्रोक हुआ मतलब पेशेंट का उम्र 60-70 वाले एज में रहेगा, बट अभी ऑलमोस्ट हर तीसरे चौथे दिन हम देखते हैं कि 30-35-40 साल की उम्र है और ब्रेन स्ट्रोक के पेशेंट एडमिट होते जा रहे हैं
1: जी।
2: तो उसका कारण हम आगे आप देखेंगे, बट एक कितने लोगों में ब्रेन स्ट्रोक होते जा रहे हैं इंडिया में, ऑन एन एवरेज अगर 1 लाख पॉपुलेशन देखे किसी शहर का तो उसमें 150 से 200 लोगों को स्ट्रोक आ रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 7-8 में से एक मरीज में हमको ब्रेन स्ट्रोक दिख रहे हैं
1: जी।
2: पहले जो नंबर्स हुआ करते थे वो ऑलमोस्ट 1 लाख में नहीं तो 10-15, तो ऑलमोस्ट वी कैन से 10 गुना जो बीमारी है वो बढ़ते जा रही है। तो सिर्फ बीमारी नहीं बढ़ रही है, एक्चुअली बड़े शहरों में इसका इंसिडेंस इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि वहां पे अस्पताल ज्यादा हो रहे हैं, सिटी स्कैन एमआरआई की सुविधा है, न्यूरो की फैसिलिटी अवेलेबल है, तो बहुत बार बीमारी के नंबर्स उतने ही हैं बट वो डायग्नोसिस ज्यादा होते पा रहे हैं।
1: अच्छा,
2: तो इसीलिए लोगों को समझ में आ रहा है कि ये स्ट्रोक है। पहले काफी बार स्ट्रोक हुआ, पेशेंट घर से अस्पताल पहुंच ही नहीं पाया और वहीं पे उनकी मृत्यु हो गई, क्या हुआ, हार्ट अटैक आ गया, बट एक्चुअल तो वो ब्रेन स्ट्रोक हुआ करता था।
1: तो ये तो बड़ी अलग तरह की जानकारी आपने दी कि लोग डायग्नोस नहीं करते थे, तो ये तो अच्छी बात हो गई कि लोग अवेयर हो गए।
2: करेक्ट, अच्छी है, बट उसका एक्चुअल नंबर बढ़ते जा रहे हैं, नो डाउट। मतलब हम स्कैन कर रहे किसी और चीज के लिए और उसमें दिख गया है तो स्ट्रोक भी है इनको, फिर बाद में पूछा जाता है

0: आपको कैसे हुआ? तो बोले हाँ, हम स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल का सेवन काफी कॉमन है, बीपी का प्रॉब्लम हुआ था बट दवाई लेना बंद कर दिए, दिन भर सिर्फ ऑफिस में बैठ के काम हो रहा है, जंक फूड बोलो खाते जा रहे हैं, और चलना या एक्सरसाइज ऑलमोस्ट ना के बराबर। तो ये जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो बोलते हैं वो एक तरह से मेजर कारण है और जिसको हम पूरी तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं। अब आप उम्र बढ़ने से स्ट्रोक होता है, ये एकदम यूनिवर्सल ट्रूथ है, बट उसको आप रोक नहीं सकते हो। बट उसके अलावा जो फैक्टर्स हैं, जैसे कुछ नियमित रूप से एक्सरसाइज करना, खाने पीने पे सॉल्ट और बीपी कंट्रोल करना, इस चीज को आप एज अ पर्सन उसको रोका जा सकता है।
1: तो कारण भी एक तरह से आपने बता ही दिया है, लेकिन कई बार आपने कहा जो ब्रेन हैमरेज होता है, तो आपने कहा कि टेंशन और इस वजह से भी होता है, तो टेंशन और एक कारण और भी है, क्रोध, गुस्सा। कई बार हम लोगों को देखते हैं कि आग बबूला हुए हैं, लाल हुए हैं
0: करेक्ट
1: बिल्कुल,
0: करेक्ट। तो
1: तो ये सब भी कारण हो सकता है
0: वो
1: क्या
0: एक
1: जिस
0: ही
1: पर?
0: कारण नहीं है, बट उससे एक है कि बीपी जो है, ब्लड प्रेशर जिसको हम बोलते हैं रक्तदाब, वो कंफर्म है बढ़ता ही है उस वक्त। तो जितना ब्रेन में खून जाना चाहिए वो बढ़ते जा रहे हैं, हार्ट बीट तेज हो जाती है उसकी, और जो ब्रेन की नसें हैं जिसको हम बोलते हैं पाइपलाइन, इंग्लिश में उसको बोलते हैं आर्टरी, उसका जो कैपेसिटी है उस खून को टॉलरेट करने का, प्रेशर
1: जी
0: इतना बढ़ गया कि वो नस फट गई। तो अगर आप देखें कि ब्रेन स्ट्रोक ज्यादा कॉमन है या ब्रेन हेमरेज, 100 में से 85% अभी भी ऐसे हैं जो ब्रेन स्ट्रोक होते हैं,
1: जी
0: और 15% पेशेंट को एक्चुअली ब्रेन हेमरेज होता है।
1: जी
0: बट जो ज्यादा खतरनाक चीज है वो ब्रेन
1: हाँ
0: हेमरेज, जिसमें काफी पेशेंट घर से अस्पताल पहुंच ही नहीं पाते।
1: तो ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण क्या होते हैं? कैसे पता चलता है मरीज को कि ब्रेन स्ट्रोक हो गया है, होने वाला है?
0: तो ब्रेन का ऐसा है कि हर एक हिस्सा ब्रेन का जो है कुछ ना कुछ उसका एक डेजिग्नेटेड काम है। जैसे अगर दाएं तरफ ब्रेन में कुछ दिक्कत हुई तो उसका जो असर है वो शरीर के बाएं तरफ होगा। जैसे ब्रेन के राइट साइड में ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है तो पेशेंट का धीरे धीरे बायां हाथ पैर जो है वो काम करना बंद कर देता है। तो सारे पेशेंट में पूरा हाथ पैर काम बंद कर देगा ऐसा नहीं है, अगर छोटा स्ट्रोक है तो कुछ कमजोरी आएगी, पेशेंट चल रहा है तो उनको लगेगा कि उनका शरीर बाएं तरफ धीरे धीरे स्विंग होते जा रहा है।
1: ओहो
0: अगर यही स्ट्रोक ब्रेन के बाएं तरफ आती है, लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड को हम बोलते हैं डोमिनेंट ब्रेन, मतलब जिसमें काफी ज्यादा फंक्शन होते हैं, तो उसमें छोटा स्ट्रोक भी अगर रहे तो दिक्कत ज्यादा होती है। तो
1: जी
0: उसमें खास करके चेहरा टेढ़ा हो जाना, बात करते तो ऐसा लग रहा है कि पेशेंट हकला के बात कर रहा है, जबान वजन हो जाना, और उसका असर बाएं तरफ का जब स्ट्रोक है तो उससे बात करने के अलावा राइट साइड का हाथ पैर का मूवमेंट कम हो जाता है। तो एज अ डॉक्टर हम देखते हैं कि अगर राइट साइड में स्ट्रोक है तो वो अच्छा है, अच्छा मतलब
1: ठीक है।
0: रिकवरी का जो समय है वो काफी कम रहता है और परमानेंट बहुत ज्यादा डैमेज नहीं होता है। बल्कि जब लेफ्ट में अगर स्ट्रोक हो तो छोटा स्ट्रोक भी काफी ज्यादा ब्रेन को
1: ओ
0: इम्पैक्ट करता है। तो
1: जी
0: कौन सा हिस्सा इन्वॉल्व हो रहा है उससे काफी ज्यादा लक्षण जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। लेफ्ट इज बैड, राइट है तो स्ट्रोक ओवरऑल खराब बीमारी, बट राइट इज कंपेरेटिवली थोड़े ठीक ठाक उसमें रिजल्ट आ जाते हैं।
1: तो ये अचानक होता है, शरीर पहले से कुछ संकेत देता है कि ऐसा होने वाला है, जैसे आपने कहा ब्लड सप्लाई ठीक रहे, तो इस सब के लिए कुछ कोशिश
0: स्ट्रोक
1: प्रयास किया जा सकता है ठीक करने का?
0: यूजुअली ऐसा एकाएक ही होता है, इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं मिलता है। मतलब मैक्सिमम पेशेंट ऐसे है, जैसे मैं मुंबई में प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो यहाँ तो सारी सुविधा अवेलेबल है, सीटी स्कैन, एमआरआई, ऑलमोस्ट बम्बई के किसी भी हिस्से में आप देखो 10 मिनट में स्कैन हो ही जाता है। दिक्कत वही है, पेशेंट को जब भी हाथ पैर में दिक्कत हो तो कोई ये नहीं सोचेगा कि ये मुझे ब्रेन स्ट्रोक के कारण हो। वो क्या सोचेंगे, मेरे सोने का तकिया मैंने चेंज कर दिया, मुझे पैर
1: ओ
0: में मोच आ गई,
1: जी जी
0: उसके
1: जी
0: कारण मैं चल नहीं पा रहा हूँ। तो हमारा एक ही है कि थोड़ा भी डाउट रहे तो तुरंत जाके एक बार न्यूरो से कंसल्ट करवाइए। खुद के लेवल पे जब इलाज करने की कोशिश करो तो दिक्कत होती है कि जो इनिशियली 3-4 घंटे का हमारा गोल्डन पीरियड जिसको बोलते हैं वो समय निकल जाता है। तो ये गोल्डन पीरियड का क्या कंसेप्ट है, जब भी स्ट्रोक के लक्षण आए, आपने जाके डॉक्टर को दिखाया अपने न्यूरो को, या न्यूरो समझो अवेलेबल नहीं है, एक अच्छे एमडी फिजिशियन भी है वो भी काफी बार डायग्नोस कर लेते हैं, और अगर हमने एमआरआई किया उसमें दिख गया कि छोटा सा स्ट्रोक है, वो 3-4 घंटे का समय ऐसा है कि जिसमें आप ऐसा इंजेक्शन दे दो खून पतला करने का जिससे वो स्ट्रोक रिवर्स होने के चांसेस हैं। दिक्कत तब आती है जब पेशेंट पेरीफेरी में है, वहां से न्यूरो के सेंटर तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, जब आए तब ऑलरेडी वो 24 घंटे का समय निकल गया, तो उसके बाद हम उनको इंजेक्शन दे भी नहीं पाते हैं। तो उसमें जो इलाज रह जाता है हमारे पास वो सिर्फ खून पतला करने की दवाई दो, बट उसमें दिक्कत यही है कि जो डैमेज हो गया है आप उसको रिवर्स नहीं कर पाते हो।
1: जी
0: तो सिर्फ खून पतला करने की दवाइयाँ और फिजियोथेरेपी, बट इससे काफी बार पेशेंट डिपेंडेंट रह जाते हैं। तो
1: ओके
0: इसके लिए हम बोलते हैं टाइम इज ब्रेन, मतलब जितना जल्दी आप अस्पताल पहुंचो उतना जल्दी रिकवरी के चांसेस आपके बढ़ते जाते हैं।
1: जी, तो डॉक्टर अजीत, हमारे श्रोताओं को बताइए कि क्या इसका हृदय से भी कुछ संबंध रहता है, क्योंकि ये जो खून पतला करने की बात आपने बताई, तो कोलेस्ट्रॉल जिनका बढ़ जाता है उन्हें भी इस तरह के कुछ इलाज होते हैं,
0: बहुत,
1: तो इसका क्या संबंध
0: है? खून अगर गाढ़ा हो जाए उम्र के हिसाब से, अगर खून की जो ब्रेन की नसें हैं वो पतली होती जा रही है, तो जितना ब्लड ऊपर जाना चाहिए वो पाइपलाइन छोटी होती जा रही है, खून गाढ़ा हो गया, कोलेस्ट्रॉल है, डायबिटीज है, तो इन मरीजों में स्ट्रोक के चांसेस बढ़ते रहते हैं। तो जब भी पेशेंट को स्ट्रोक आता है एज अ न्यूरो, हम उनका हार्ट का भी जांच करते हैं देखने के लिए कि कहीं उनको सेम प्रॉब्लम हार्ट में भी तो नहीं है। तो दोनों का इलाज वही है, खून पतला करने की दवाइयां, बट उनका जो डोसेज है वो चेंज होते रहता है।
1: जी जी
0: तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्ट्रोक आ रहा है और हार्ट एकदम अच्छा है, काफी पेशेंट में दोनों दिक्कत होना बहुत कॉमन है।
1: जी जी तो डॉक्टर तक पहुंचने के पहले इनिशियल स्टेज पर कोई घरेलू इलाज भी संभव है, मसाज वगैरह कुछ ऐसा करना चाहिए?
0: ये एक मेजर डिफरेंस है जिसमें हम बोलते हैं, जैसे हार्ट का जब भी बोला जाता है कि हार्ट अटैक आ रहा है या छाती में पाल्पिटेशन है, घबराहट हो रही है, तो काफी बार आजकल हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि ये वाली एक दवाई घर पे रखी है जिसका नाम बोलते हैं डिस्प्रिन या इकोस्प्रिन, और उसको तुरंत खा लो। तो ये किसी हद तक हार्ट में भी अच्छी चीज है, बट जब भी हम बोले कि आपको ब्रेन के सिम्टम्स हैं, उसमें आप खुद से बिल्कुल भी दवाई लेने की कोशिश नहीं करना। क्यों, क्या दिक्कत होती है? जैसे मैंने बताया 85% लोगों में ब्रेन स्ट्रोक होता है, बट 15% लोगों में ब्रेन हेमरेज रहता है, और दोनों के सिम्टम्स लक्षण ऑलमोस्ट एक ही है।
1: जी।
0: तो अगर आपने वही सोशल मीडिया पे आधी इन्फॉर्मेशन से खुद से दवाई खाने की कोशिश की, और अगर गलती से आपके जो ब्रेन में कंडीशन है वो ब्रेन हेमरेज था, और ऊपर से आपने खून पतला करने की दवाई खा ली, तो वो जो दिक्कत है वो 10 गुना बढ़ जाएगी। ब्रेन हेमरेज है, आपने खून पतला करने की दवाई खा ली, और वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो बिना चेक किए, बिना न्यूरो के सलाह के खुद से दवाई नहीं खाना। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज जितना जल्दी आप अस्पताल पहुंच सको पहुंच जाइए, रादर देन किसी डॉक्टर को फोन पे एक बार बात कर लूं। ब्रेन में अभी तक अनफॉर्चुनेटली इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं है।
1: बिल्कुल, और एक जमाना था जबकि आपके पास सुविधाएं नहीं थी डॉक्टर के पास पहुंचने के लिए, अभी तो एम्बुलेंस की सुविधा है, तुरंत नंबर रखना चाहिए। लोग सोचते हैं कि हम पहले से एम्बुलेंस का नंबर नहीं रखेंगे, अगर रखेंगे तो नौबत आ जाएगी, तो इन सब मिथ से बाहर आना चाहिए, है ना? तो
0: उसमें ऐसा है कि आप दिक्कत होने के बाद अगर सब कोशिश करो तो उसमें नुकसान सिर्फ पेशेंट का ही है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो हम बोलते हैं जैसे आपने बताया कि फोन नंबर रखिए, मैं ये बोलूंगा आपके आसपास कौन से अस्पताल ऐसे हैं जहां पे 24 घंटा ब्रेन की सारे स्कैन एंजियोग्राफी की सुविधा हो। वो आपको ब्रेन स्ट्रोक होने के पहले पता होना चाहिए, बीमारी होने का इंतजार मत कीजिए। उससे भी अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखिए, क्योंकि अभी तक बॉम्बे जैसे शहर में ब्रेन और हार्ट ये दोनों ऐसी बीमारियां हैं जो आपका पूरा जो खर्च है वो एक साथ सब साफ हो जाता है।
1: जी जी,
0: बाकी छोटी जो बीमारियां हैं अपेंडिक्स बोलिए, हर्निया, ये फिर भी एक छोटे कहीं नर्सिंग होम में मैनेज हो जाते हैं, बट ब्रेन और हार्ट का ऐसा है कि बीमारियां होती कम है, बट हो तो बर्डन काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं।
1: बिल्कुल, ये बहुत जरूरी बात आपने बताई, और हम एक जरूरी बात आपको याद दिला रहे हैं कि यहाँ पर एक आपकी पसंद का गाना हो जाए, बताइए कौन सा गाना हम सुनवाए?
0: पसंद का, मैं विविध भारती में आया हूँ तो आई थिंक पुराने एक सॉन्ग का मन है मेरा, फ्रॉम द मूवी लव, साथिया तूने क्या किया, बाय आई थिंक SP बालसुब्रमण्यम।
1: जी, SP बालसुब्रमण्यम की आवाज है, सुनते हैं ये गाना।

0: गाने के बाद डॉक्टर साहब हमें बताइए कि जब स्ट्रोक आता है, ब्रेन स्ट्रोक, तो जो ट्रीटमेंट शुरू होता है, तो इसमें फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, ये कितना कारगर होता है और कितना जरूरी होता है?
1: तो दवाइयों का जो रोल है इसमें या डॉक्टर्स का जो रोल है, वो पहले 5-7 दिन 10 दिन मैक्सिमम, उसके बाद जो भी इलाज है उसको हम बोलते हैं नर्सिंग केयर। नर्सिंग केयर मतलब एक अच्छा स्किल्ड नर्स, जो भी ब्रदर बोलो सिस्टर्स बोलो, वो एक केयर टेकर। अगर पेशेंट तुरंत चल फिर नहीं पा रहे हैं तो उनके लिए घर पे सुविधा, जो उनको उठा के बिठाए, चलाए, वॉशरूम ले जाए, और प्लस स्पीच थेरेपिस्ट। तो सारे मरीजों में स्पीच थेरेपिस्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। जब हम बोलते हैं कि बाएं तरफ का स्ट्रोक है तो उनको 1-2 महीना स्पीच फिजियोथेरेपी, तो ये जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो काफी बार ऐसा होता है कि डॉक्टर से ज्यादा। क्यों? क्योंकि डॉक्टर का काम क्या है, स्ट्रोक बढ़ना नहीं चाहिए, गाइडेंस दे दीजिए बस। बट जब मरीज अस्पताल में आया, ऑलरेडी स्ट्रोक काफी बड़ा था, तो उसमें बहुत कुछ ज्यादा करने जैसा रहता नहीं है। आप दवाई दो, फैमिली को काउंसिल कीजिए 4-5 दिन 7 दिन, एक बार लगा वो स्टेबल हो जाए तो हम बहुत दिन तक इनको अस्पताल में रखने का कोई फायदा नहीं होता है। 5-7 दिन बाद हम उनको बोलते हैं कि ये जो रिहैब सेंटर्स होते हैं, जो कुछ सर्जरी या दवाइयों के बाद जो मरीजों को 1-2 महीना केयर टेकर कैसे काम करते हैं वो सिखाया जाता है। तो जितना डॉक्टर्स का रोल है स्ट्रोक में, उससे कहीं ज्यादा मैं बोलूंगा जो रिहैब सेंटर्स होते हैं छोटे छोटे फिजियोथेरेपिस्ट, उनका उतना इक्वली कॉन्ट्रीब्यूशन है।
0: जी, संवेदना के स्तर पर, मानसिक स्तर पर भी परिवार की भूमिका होती है, तो कैसी भूमिका होनी चाहिए परिवार
1: की? सबसे मुश्किल काम जो आई थिंक ब्रेन की कोई भी बीमारी, ब्रेन ट्यूमर बोलो, ब्रेन स्ट्रोक बोलो, उसमें फैमिली का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है या एज अ डॉक्टर मुझे जो उनको समझाना पड़ता है, वो सबसे मुश्किल काम। क्योंकि काफी बार पेशेंट जब आता है उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि हो क्या रहे। परिवार का ये उम्मीद एक्सपेक्टेशन रहता है कि पेशेंट आज भर्ती हुआ है, 2 दिन हम दवाई देंगे और कल चल के घर चला जाएगा। तो वो जो एक डिनायल वाले फेज में रहते हैं, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं कि कल तक तो हमारा मरीज एकदम अच्छा था, आज अचानक कैसे उनका हाथ पैर काम नहीं कर रहे, 3 दिन से अस्पताल में रखे फिर भी अभी चल क्यों नहीं पा रहे। तो वो एक टैकल करना हमारा काम है कि अच्छे से उनको रिलेटिव्स को बिठा के बात कीजिए। काफी पेशेंट मान जाते हैं, फैमिलीज काफी बार होते हैं कि नहीं हमको और कहीं जाना है। अल्टीमेटली उसके इलाज में कोई अंतर नहीं होता है, बट जब सेम चीज 2 अलग अलग डॉक्टर ने उनको बोल दिया, इसको हम बोलते हैं सेकेंड ओपिनियन, दोनों तीनों ने उनको वही समझाया, तब वो घूम फिर के बोलते हैं हाँ डॉक्टर साहब आपने जो बताया वही सही था। बट उसमें है कि आप किसी को ऐसा फोर्स नहीं कर सकते हो, क्योंकि बीमारी का जो आउटकम है वो समय के हिसाब से चेंज होता रहता है। ऐसा नहीं है कि आप बड़े जगह रखो तो बीमारी तुरंत ठीक हो जाएगी, ऐसा नहीं है। तो उनको समझाना काफी मुश्किल बोल सकता हूँ।
0: जी, जी, और वो सब भी परिवार वाले जो कहते हैं संवेदना, मतलब रिश्तेदार, कि अरे फलाने को ब्रेन स्ट्रोक हुआ था तो ऑन द स्पॉट चले गए,
1: तो वो जो ये जो है कि मेरे गांव में तो ऐसा हुआ था, हमने उनको एक ऐसा सिरप पिलाया तो आप भी कुछ दे दीजिए। तो जैसे हम तो एलोपैथी प्रैक्टिस करते हैं, इसमें तो कुछ है नहीं, बट जब भी ऐसा है कि पेशेंट रिकवर नहीं हो रहे, पेशेंट उनकी फैमिली वो सारी कुछ कोशिश करेंगे, मतलब अदर देन एलोपैथी, कुछ होम्योपैथिक पिल्स दे दो, कुछ आयुर्वेदिक का ये पिला दो। तो हम तो ये बोलते हैं कि आपको जिस पे भरोसा है वो कंटिन्यू कीजिए, हमारी तरफ से गिन के 3-4 जो भी दवाइयां हैं वो कंटिन्यू करो, आपको जिससे फायदा हो जाए वो।
0: लेकिन फिलहाल तो यही है कि अभी इसका इलाज मेडिकल साइंस जो एलोपैथ में ही है। अच्छा, एक बार स्ट्रोक आने पर क्या दोबारा खतरा बना रहता है?
1: काफी पेशेंट है जो स्ट्रोक से रिकवर हुए और वो इतने खुश हो जाते हैं 6 महीने साल भर में कि मैं तो खुश हो गया, डॉक्टर मुझे जबरदस्ती दवाइयां खून पतला करने की, जो भी कॉमन नाम इकोस्प्रिन ग्लो

0: फिट है, अब तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं चल रहा हूँ, खेल रहा हूँ, भाग रहा हूँ, जबरदस्ती डॉक्टर मुझे दवाई दे रहे हैं उनके फायदे के लिए, बंद कर देते हैं, कुछ नया एडिक्शन शुरू हो गया, उम्र के हिसाब से खून की नस कमजोर होते जा रही है, अल्टीमेटली वो पेशेंट दोबारा स्ट्रोक करके आते ही हैं।
1: ओहो
0: तो स्ट्रोक हुआ, आपने खून पतला करने की दवाई शुरू की, अगर बंद कर दो तो स्ट्रोक आ सकता है? नहीं, स्ट्रोक आता ही है, इट इज अ
1: अच्छा
0: मैटर ऑफ फ्यू ईयर्स, 2 साल
1: जी
0: 5 साल, और जब दोबारा स्ट्रोक आता है तो उसमें रिकवरी की हम उतना फास्ट उम्मीद नहीं करते हैं। तो
1: जी
0: इसलिए
1: जी
0: हमारा एक ही मैसेज है कि अगर दवाइयाँ शुरू है वो अपने लेवल पे आप बंद मत कीजिए, अगर आपको डॉक्टर ने बोला है तो फिर अदरवाइज बेटर टू कंटिन्यू।
1: जी
0: दो
1: जी
0: हजार एकदम सेफ दवाइयाँ रहती है, मन में डर क्या रहता है कि दवाई इतने समय तक खाऊं तो उससे मेरा कुछ लंग किडनी लीवर पे कुछ साइड इफेक्ट ना आ जाए, अगर डॉक्टर आपको दवाई दे रहा है तो कुछ ना कुछ सोच के ही दिया जा रहा होगा कि इससे आपको दिक्कत ना हो,
1: बिल्कुल।
0: ऐसा।
1: और डॉक्टर के पास सबके कारण होते हैं, तो इसलिए डॉक्टर की बात आंख बंद करके मान लेनी चाहिए। और हमें यहाँ पर आंख बंद करके एक गाना सुन लेना चाहिए। बताइए, आपकी पसंद का कौन सा गाना हम सुनवाएं?
0: अब मैं सुनना चाहूंगा, एक ओल्ड सॉन्ग ही है, मैं पल दो पल का शायर हूं।
1: जी, सुनते हैं कभी कभी फिल्म का गाना,
0: जी हाँ।
1: सुनते हैं ये।

0: डॉक्टर साहब, ब्रेन स्ट्रोक की बात हम कर रहे थे गाने से पहले। एक बड़ी बीमारी है, हमें तो लगता है कि हर कोई उससे पीड़ित है, और सिर पकड़ के बैठ जाना, चाहे वो दफ्तर हो चाहे घर हो, कि सिर दर्द हो रहा है। कुछ लोगों को सिर दर्द बाईं तरफ होता है, कुछ लोगों को दाईं तरफ, कुछ को पूरे सिर में। तो इसका क्या फंडा है, क्या कारण है और क्या इलाज है इसका?
1: इसको हम हेडेक बोलते हैं। आई थिंक अभी भी
0: जी
1: जो भी न्यूरो, नॉट ओनली इन मुंबई, आई थिंक जहाँ पे पूरे इंडिया में जो भी न्यूरो प्रैक्टिस करता है, उनके सबसे कॉमन मरीज जो होते होंगे वो ये दर्द के ही है, हेडेक। तो इसमें नॉट ऑल

0: हेडेक्स आर डेंजरस, ये तो ऐसा है स्ट्रेस के कारण होता है। पेशेंट खुद से गूगल पे रिसर्च करके आते हैं, आने के बाद पहला चीज वो यही बोलते हैं, सर मुझे माइग्रेन है, मुझे माइग्रेन की दवाई दे दो। तो
1: जी
0: उसका हमारा भी एक आंसर है कि अगर आपको पता है आपको माइग्रेन है
1: तो दवा
0: तो
1: ले लो
0: नेट पे उसका एक इलाज भी अवेलेबल, आप ले क्यों नहीं लेते हो।
1: बिल्कुल
0: तो सारे हेडेक जो हैं उसके लिए
1: हाँ
0: ऐसा कुछ कंपलसरी सीटी स्कैन एमआरआई करना ही ऐसा नहीं
1: हाँ
0: है। जैसे मैंने स्ट्रोक के लिए आपको बताया था कि जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है वो दर्द का एक कॉमन कारण है। तो आजकल नींद पूरी नहीं हो रही है, आपका मोबाइल बोलो या डिजिटल समय जो जा रहा है स्क्रीन पे, वो सब एक बहुत कॉमन हेडेक के कारण हो रहे हैं। काफ़ी बार हम पेशेंट देखते हैं कुछ बेसिक दवाइयाँ लिख दिया उसको, जो आप मल्टीविटामिन बोलो या प्लेसिबो बोलते हैं, जो कुछ काम नहीं करती हैं। पेशेंट को 10 दिन दवाई दे, दर्द एकदम गायब हो गया। और हम जब देखते हैं क्या दवाई दिया है हमने, तो वो ऑलमोस्ट कुछ नहीं, मल्टीविटामिन दिए थे। तो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी रहता है कि मुझे दर्द हो रहा है, डॉक्टर ने दवाई दी, ठीक हो गया। बट कुछ कुछ दर्द ऐसे हैं जिसमें हम तुरंत देख के बोलते हैं कि इसका एमआरआई करना पड़ेगा, जिसमें हम वो देख के डाउट आता है। हमने
1: जी
0: पेशेंट को एग्जामिन किया क्लिनिक में, उनकी आंखों का हलचल अच्छे से नहीं हो रहा है, बोलते टाइम जबान एकदम साफ, वर्ड्स निकल नहीं पा रहे, चेहरा टेढ़ा हो रहा है। हमने कुछ अपने इंस्ट्रूमेंट से उनके कान का हियरिंग चेक किया
1: जी
0: या उनके चलने का स्टाइल, तो सटल साइंस कहीं ना कहीं हम पकड़ लेते हैं। अगर ब्रेन के अंदर कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, जैसे कुछ गांठ है, पानी भर गया है, कुछ पुराना चोट लगा था उसका ब्लीडिंग का असर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हाथ पैर का मूवमेंट, या और एक आपने देखा होगा हम उनके हाथ पैर पे एक मार के देखते हैं, उसको हैमर बोलते हैं, जर्क देखने के लिए। तो अगर वो जर्क कुछ चेंज हुए हैं उन पेशेंट को हम बोलते हैं कि आपका एमआरआई करना पड़ेगा।
1: जी
0: अदरवाइज अभी भी ऐसा है 90 से 95% जो हेडेक के पेशेंट है वो बेसिक दवाइयों से एकदम आराम हो जाते हैं। और
1: जी
0: दवाइयाँ ऐसी भी नहीं है कि जिसको लंबे समय तक खाना पड़े। कुछ हम स्पेसिफिक एडवाइस देते हैं, इतने बजे खाना खाइए, इतने बजे सोइए, सोते वक्त फ़ोन को आधे घंटे पहले छोड़ दीजिए, और कुछ दवाइयाँ जो ब्लड में जो फ्लो है उसको कम ज़्यादा मैनेज कर रहे हैं, उसी से आराम हो जाता है। माइग्रेन जो बीमारी है वो एक्चुअली उतनी कॉमन नहीं है जितना लोग अपने लेवल पे खुद से डिक्लेयर कर देते हैं।
1: जी
0: और अगर वो माइग्रेन है तो अच्छी चीज़ ये है कि इलाज हो जाता है, खराब चीज़ ये है कि उसको जो दवाइयों का कोर्स है वो काफ़ी लंबा चलता है।
1: जी
0: तो काफ़ी लोगों को कॉफ़ी पीने से, किसी को मीठा खाने से, किसी को ऐसा कोई झाड़ू मार रहा है, कोई डस्ट है उससे एलर्जी है, उससे दर्द होता है। बट काफ़ी दर्द ऐसे भी हैं जो कारण सिर में है ही नहीं, उसका कारण है दांतों में, आंखों में, चश्मे का नंबर चेंज हुआ है, कान में कुछ इन्फेक्शन है, साइनस की बीमारी है, तो आप इसको ठीक करो, सिर का दर्द अपने आप गायब हो जाता है।
1: जी सिर दर्द क्या डॉक्टर साहब पेट की समस्या से भी होता है और ये नाक बंद होने या साइनस की वजह
0: करेक्ट,
1: से भी होता
0: एग्जैक्टली,
1: है?
0: जैसे मैंने बताया चश्मा,
1: हाँ
0: नाक, किसी को दांत में इन्फेक्शन हो, जिसको हम बोलते हैं रूट कनाल
1: जी
0: करवाना
1: जी
0: है, दांतों में कीड़ी लग गई है, मसूड़ों का प्रॉब्लम है,
1: इसकी वजह से भी
0: तो
1: सिर दर्द होता है?
0: अल्टीमेटली सारा जो जाएगा सिग्नल
1: ओ
0: वो जाना है ब्रेन पे ही।
1: हाँ
0: काफी बार
1: हाँ
0: लोग बोलते हैं मैंने 4 घंटे तक खाना नहीं खाया तो मुझे दर्द होने लगा, तो वो गलत नहीं बोल रहे हैं।
1: हाँ
0: दिक्कत
1: हाँ
0: है पेट की, पेट में
1: हाँ
0: जो एसिड का प्रोडक्शन हो रहा है
1: जी जी
0: उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अगर आप कुछ ना खाओ तो अल्टीमेटली उसका भी सिर पे दर्द। तो ये सब जो दर्द के कारण है उसके लिए हमको कोई स्कैन, एमआरआई, सीटी स्कैन की जरूरत नहीं पड़ती है।
1: जी
0: हम 10 मिनट मरीज से बात करो, पेन का पैटर्न कैसा है, कब होता है, क्या करने से अच्छा लगता है, उन बेसिक दवाइयों से ही आराम हो जाता है।
1: जी
0: तो पेशेंट बोलते हैं कि सर मुझे सिर दर्द हो रहा है, मेरे पड़ोसी को ऐसे ही था, उसको ब्रेन ट्यूमर निकल गया था, तो मैं भी जाके एक एमआरआई करा लूं। तो हमारे लिए एमआरआई करवाना एकदम आसान चीज है, मैं लिख दूं 10 मिनट में उसका एमआरआई कहीं जाके हो भी जाए।
1: जी
0: तो हम जो प्रैक्टिस करते हैं हम चाहते हैं कि बिना एमआरआई के आप कैसे उस बीमारी को डायग्नोस कर सको,
1: जी जी
0: तो वो न्यूरो का काम है कि आप कंसल्ट करो, ना कि खुद से एमआरआई कराओ। उसमें कुछ लिखा रहेगा कि साइनसाइटिस है, फिर पेशेंट उसको गूगल पे सर्च करेगा कि इससे मुझे आगे जाके ब्रेन में
1: जी
0: इन्फेक्शन हो सकता है,
1: भाप ले लो
0: तो वो थोड़ा
1: और
0: हमारे लिए मुश्किल काम होता है कि जो
1: जी
0: पेशेंट गूगल से पढ़ लिख के आते हैं,
1: जी
0: दैट इज अ
1: जी
0: हाफ इन्फॉर्मेशन,
1: जी और गूगल आजकल बहुत बड़ा डॉक्टर बन
0: हाफ डॉक्टर बोल सकता हूँ मैं
1: गया है
0: वो।
1: जी, और उससे नुकसान ज्यादा होते हैं फायदे कम, तो
0: करेक्ट
1: इसलिए
0: करेक्ट
1: सिरदर्द भी अगर हो रहा है तो इग्नोर करने की
0: करेक्ट
1: बजाय
0: करेक्ट
1: डॉक्टर
0: करेक्ट
1: से
0: करेक्ट
1: संपर्क
0: करेक्ट
1: कर
0: तो
1: ले
0: वो जो
1: और
0: 5% के पेशेंट है जिसको एक्चुअली ब्रेन में दिक्कत है, हमारा टारगेट रहता है हम उसको कैसे कैच कर सके। जैसे
1: जी
0: ब्रेन हेमरेज है तो सिर दर्द हो रहा है, वो खुद से डिस्प्रिन की गोली घर पे खा ले तो ब्रेन हेमरेज बढ़ना ही है। तो हम बोलते हैं आइए हम देखेंगे जांच
1: ओ
0: कौन सी करनी है, सीटी स्कैन करना है, एमआरआई करना है, एंजियोग्राम करना है, बहुत सारी जांच है, तो उसके लिए कौन सा नेसेसरी टेस्ट है वो आई थिंक बिना देखे बोलना मुश्किल है, उसके लिए
1: जी
0: हमको मरीज को चेक करना ही पड़ता है।
1: जी बिल्कुल। और स्ट्रोक जब आता है तो ब्रेन स्ट्रोक, इसके बाद क्या मरीज एकदम सामान्य जीवन जी पाता है या फिर उसको कहीं तकलीफ होती है कि एब्सेंट माइंड होना याददाश्त पर असर पड़ता है?
0: किस स्टेज पे आते हैं? काफी बार ब्रेन स्ट्रोक इतना बड़ा हो जाता है कि उसमें हमको सूजन कम करने के लिए सर्जरी भी करनी पड़ती है।
1: अच्छा,
0: तो इसका ऐसे कोई

0: ग्रॉस परसेंटेज बोलना काफी मुश्किल है कि कितने स्ट्रोक में पेशेंट कितना रिकवर होगा। एक अगर आप पूछे कि स्ट्रोक होने से डेथ का चांस कितना रहता है, एक जो ओवरऑल ICMR जो अपनी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का डेटा है, ऑलमोस्ट 16 से 20% डेथ होते हैं अभी भी भारतवर्ष में। तो ये बहुत छोटा नंबर नहीं है। तो ये जो 16 से 20% है इसको हम अभी भी रोका जा सकते हैं, प्रोवाइडेड पेशेंट एकदम समय पर अस्पताल आ जाए। कुछ ना कुछ जो बोलते हैं परमानेंट पैरालिसिस बोलो, या भले ही पैरालिसिस ना हो बट उनके जो चलने का पैटर्न है डिसेबिलिटी बोलते हैं, तो उसका एक परसेंटेज रहता है कि हाथ कितना काम नहीं कर रहा है, चेहरा कितना टेढ़ा हुआ है, जैसे सिर के पिछले हिस्से में स्ट्रोक हुआ है, जैसे मूवी में दिखाते हैं कि सिर पे मार दिया और उसकी आंखों की रोशनी चली गई, तो वो एकदम गलत नहीं है। उसको हम बोलते हैं ऑक्सीपिटल लोब। तो अब
1: अच्छा
0: उसका मेन काम रहता है आंखों की रोशनी प्रोवाइड करना। तो अगर किसी को उस हिस्से में स्ट्रोक हुआ है तो काफी बार एक आंख की रोशनी चली जाती है।
1: जी, तो मतलब कुल मिलाकर यह है कि ऐसा कोई भी सिम्टम, कोई लक्षण आपको लगता है, दिखाई देता है, तो डॉक्टर से संपर्क कर लें।
0: करेक्ट।
1: और हमें इस समय बताइए कि कौन सा गाना आपकी ओर से सुनवाए हम श्रोताओं को।
0: लापता लेडीज का एक फेमस सॉन्ग है अरिजीत का, वो सुनना पसंद करूंगा मैं, सजनी रे,
1: जी
0: बहुत ही
1: सुनते
0: फेमस
1: हैं,
0: सॉन्ग है वो।
1: जी सुनते हैं ये गाना, अरिजीत सिंह की आवाज में है
0: जी
1: ये गाना।
0: करेक्ट।

0: गाने से पहले हम ब्रेन स्ट्रोक की बात कर रहे थे डॉक्टर अजीत, अब हम ब्रेन ट्यूमर के बारे में आपसे जानकारियां चाहेंगे कि आजकल ब्रेन ट्यूमर भी बहुत कॉमन हो चला है। पहले हम ब्रेन ट्यूमर तो एक सामान्य व्यक्ति जानता ही नहीं था, अभी ब्रेन ट्यूमर के बारे में लोग बहुत सजग भी रहते हैं। तो ये क्या है और क्या एक तरह से कैंसर है क्या?
1: थोड़ी तो खतरनाक बीमारी है। एक ही
0: जी
1: अच्छी चीज़ है कि ओवरऑल जो शरीर में जितने ट्यूमर्स होते हैं उसमें अगर हम ब्रेन ट्यूमर को काउंट करें तो नंबर्स अभी भी काफ़ी कम हैं। जैसे अगर 95% पेशेंट ट्यूमर शरीर के बाहर है,
0: जी
1: ब्रेन ट्यूमर इज हार्डली 5-7%। तो इट इज़ ओवरऑल गुड फॉर द ह्यूमैनिटी कि ब्रेन ट्यूमर बहुत कॉमन बीमारी नहीं है।
0: जी
1: बट जब होती है तो बाकी बीमारियों से ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स, क्योंकि उसका जो इलाज है मोस्ट ऑफ द पेशेंट में सर्जरी ही करनी पड़ती है, क्योंकि जो ब्रेन का ढांचा है वही धीरे धीरे इस ट्यूमर के कारण खराब होते जा रहे हैं। पर जैसा आपने पूछा कि हर ब्रेन ट्यूमर कैंसर होता है, आंसर इज नो। ऑलमोस्ट

0: 70 और 30 ऐसे हैं, 70% ट्यूमर जो होते हैं वो नॉन कैंसरस ट्यूमर जिसको हम बोलते हैं, तो उसमें एक बार आप ट्यूमर निकाल दो सर्जरी करके रेडिएशन या जिससे भी, क्योर हो जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली जो 30% ट्यूमर है जिसको सबसे कॉमन बोलते हैं हम ग्लायोब्लास्टोमा, तो ये कैंसर है जिसका अभी तक नॉट ओनली इन इंडिया, पूरे वर्ल्ड में ऐसा परमानेंट क्योर नहीं है। तो जो भी एक निगेटिव माइंडसेट अभी तक जो कम्युनिटी में बना हुआ है कि ब्रेन ट्यूमर है मतलब इसकी तो मृत्यु तय है, तो वो एकदम गलत भी नहीं है। तो शायद उन्होंने उस 30% वाले पेशेंट को देखा होगा जिसमें पेशेंट ने सर्जरी किया, कीमोथेरेपी ली गई, रेडिएशन दिया गया, बट अनफॉर्चुनेटली उसमें बहुत लंबे समय तक लाइफ नहीं रह पाती है। तो बीमारी का नाम हम बोलते हैं ग्लायोमा या ग्लायोब्लास्टोमा। तो वो शुरुआत से ही स्टेज 4 या ग्रेड 4 में ही डायग्नोज ही होता है। दिक्कत यही है कि वो पेशेंट को पता ही नहीं चलता है कि हुआ, अचानक एक मिर्गी झटका आया, कुछ सिर दर्द हुआ, कहीं गिर गए या देखने में प्रॉब्लम है, एमआरआई किया गया और उसमें डॉक्टर ने सीधा बताया कि आपको तो ग्रेड 4। ये मुश्किल है परिवार के लिए, फैमिली के लिए, इवन डॉक्टर्स के लिए जो ट्रीट करना। एक ही अच्छी चीज है कि उसका जो इंसिडेंस है अभी तक कितने लोगों को होता है वो बहुत कम है। एवरेज अगर इंडिया में देखा जाए कि हर साल कितने ब्रेन ट्यूमर होते होंगे, तो वो नंबर 40 से 50 हजार के आसपास है।
1: जी जी,
0: फिर एमआरआई आने के कारण ये नंबर्स बढ़ रहे हैं, बट ये अच्छा है कि एमआरआई के कारण हम उसको जल्दी पिकअप कर पा रहे हैं।
1: जी बिल्कुल। तो इसके क्या लक्षण कुछ भी नहीं होते, अचानक कोई तेज सिर दर्द और अचानक
0: जैसे ब्रेन स्ट्रोक का हमने बताया था इसके पहले कि किस हिस्से में हो रहा है वो हिसाब से हाथ पैर में कमजोरी या बोलने में दिक्कत। ब्रेन ट्यूमर में बहुत ही नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स रहते हैं, नॉन स्पेसिफिक मतलब
1: वाली बीमारी।
0: करेक्ट। काफी बार हल्का सा सर दर्द है, पेशेंट दवाइयां खा के चल रहे ठीक ठाक, फिर धीरे धीरे वो दर्द का फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ते जा रहा है, या इवन दवाई खाने के बावजूद दर्द अगर कम नहीं हो रहा है तो एक डाउट आता है, तो उसमें हम तुरंत बोलते हैं कि एमआरआई कराइए। दूसरा वॉमिटिंग होती है इसमें, तो पेशेंट बोले वॉमिटिंग तो मुझे पेट के कारण हो सकती है, ऐसा नहीं। अगर सिर दर्द के साथ में उल्टी हो रही है और उसी वक्त आपको दिखाई देने में दिक्कत है जिसको हम बोलते हैं ब्लरिंग ऑफ विजन, आंखों के सामने अचानक ऐसा धुंधलापन आ जाना, तो ये तीनों चीजें सर दर्द, उल्टी और आंखों के सामने धुंधलापन, ऐसा अगर होता है तो वो एक टाइप ऑफ ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। तब ये सारे सिम्टम्स इतने कॉमन है समाज में कि आप हर पेशेंट को बोलो जाके एमआरआई कर लो, अगेन ये पॉसिबल नहीं है। जैसे हम अब बॉम्बे में हैं, मुंबई में हैं, तो यहाँ तो एमआरआई इजीली अवेलेबल है। आप किसी भी टायर 3 सिटी में जाइए, पेरिफेरी में, वहाँ एमआरआई छोटे आपको न्यूरो के पास पहुंचना ही इतना मुश्किल हो जाता है, तो हर एक का एमआरआई करना मुश्किल होता है।
1: तो ट्यूमर के प्रकार कितने होते हैं, कौन कौन से प्रकार हैं? जिससे
0: एक होता है प्रकार, जैसे हम डॉक्टर सर्जरी की तरफ से हम अपना काउंट करते हैं कि कैंसर है कि नॉन कैंसर है। दूसरा होता है जो WHO ने टाइप देके रखे हैं, दैट इज जस्ट फॉर मेडिकल प्रोफेशन, उसमें तो 20-25 से ज्यादा है। सामने वाले पेशेंट को समझाने के लिए हमारे लिए 2 ही ट्यूमर होते हैं, कैंसर वर्सेज नॉन कैंसर। तो ऑलमोस्ट 70% नॉन कैंसर है जिसमें अच्छे रिजल्ट आते हैं।
1: जी, तो यहाँ पर एक गाना सुन लें डॉक्टर साहब।
0: एक फिल्म है राजा हिंदुस्तानी आमिर खान का, तो उसमें एक परदेसी परदेसी सॉन्ग सुनना पसंद करूंगा।
1: जी, सुनते हैं ये गाना।

0: डॉक्टर साहब, हम ब्रेन ट्यूमर की बात कर रहे थे, तो हमारे श्रोताओं को बताइए, क्योंकि एक तो गंभीर बीमारी है और अब आपने भी कह ही दिया कि इसका इलाज थोड़ा सा मुश्किल भी होता है, और सही बात आपने बताई क्योंकि सजग और सचेत होना बहुत जरूरी है। तो क्या दवाओं से ठीक हो सकता है या ऑपरेशन ही जरूरी होता है ब्रेन ट्यूमर में?
1: जो कैंसर वाले पेशेंट है, जो MRI देख के वो जानकारी लग जाती है कि ये कैंसर है कि नहीं, तो जो मैंने बताया जो खराब वाले ट्यूमर है, ग्लायोमा जिसको बोलते हैं, उसमें सर्जरी के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। कुछ कुछ बीमारियां अभी ऐसी आ रही है जिसको हम बोलते हैं मेनिंजोमा, तो ये सब मेडिकल टर्म है, बहुत ज़्यादा इसके बारे में रिसर्च करने की ज़रूरत मेरे श्रोताओं को ना पड़े तो अच्छा है।
0: बिल्कुल।
1: मेनिंजोमा, श्वानोमा, ये सब ऐसे ट्यूमर है
0: हाँ,
1: जो बहुत स्लो ग्रो होते हैं। स्लो मतलब हर साल में 2 mm 4 mm की स्पीड से बढ़ते हैं।
0: जी।
1: तो अगर मरीज बहुत जल्दी अगर आता है, एवरेज साइज ट्यूमर का 1-2 सेंटीमीटर के आसपास है, तो अभी कुछ कुछ मशीनें हैं बॉम्बे में, तो एटलीस्ट 2-3 जगह पे अवेलेबल है। आई एम नॉट श्योर कि छोटे शहरों में कितनी जगह वो मशीन होगी। उसको हम बोलते हैं गामा नाइफ मशीन या साइबर नाइफ मशीन, तो इसमें शब्द नाइफ यूज किया जाता है, बट ये सर्जरी नहीं होती है। ये एक प्रकार का रेडिएशन है जिसमें आप एक सिंगल रेडिएशन का शॉट लेके वो ट्यूमर पूरी तरह से गायब हो जाता है। बट प्रॉब्लम एक ही है, वो हम कौन से स्टेज पे उसको डायग्नोज करते हैं। जब मरीज आता है और उसमें ट्यूमर का साइज कितना है, 2-3 सेंटीमीटर से छोटा है, तो हम उसको बिना सर्जरी के ठीक कर सकते हैं।
0: जी।
1: प्रॉब्लम इज अवेलेबिलिटी ऑफ मशीन, वो कम जगह पे है। जैसे आपने बोला दवाइयों से, अनफॉर्चुनेटली अभी तक ऐसी कोई दवाइयां नहीं है जिससे हम ट्यूमर को पिघला सके। तो या तो आप उसको छोड़ दीजिए अगर वो बढ़ नहीं रहा है, अगर बढ़ रहा है तो उसमें सर्जरी के अलावा कोई चारा नहीं है।
0: जी। तो ट्यूमर का ऑपरेशन जब हो जाता है तो उसके बाद की जो सावधानी है वो क्या सावधानी बरतनी चाहिए?
1: तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसे प्रिकॉशंस नहीं रहते हैं अस्पताल में। एवरेज स्टे फॉर ब्रेन ट्यूमर 5-7 दिन में मरीज जैसे थे उसी कंडीशन में डिस्चार्ज हो जाते हैं। घर जाने का देख 10-15 दिन आफ्टर एनी मेजर सर्जरी जो हम बोलते हैं, 10-15 दिन आराम कीजिए, जो भी टांके हैं सिर पे 2 हफ्ते बाद निकाल के, महीने भर में ऑलमोस्ट 90% से ज़्यादा मरीज जो रहते हैं उनका चलना फिरना, खाना, बाहर की लाइफ एक्टिविटी, वो इंडिपेंडेंट हो ही जाते हैं। अनलेस एंड अंटिल अगर उसमें कुछ कैंसर निकल जाए जिसमें उनको जो ब्रेन की सिकाई होती है, जिसको हम बोलते हैं रेडिएशन या लाइट थेरेपी, तो वो जो समय रहता है वो ऑलमोस्ट 5 से 6 हफ्ते चले जाते हैं। बट जो नॉन कैंसरस ट्यूमर है उसमें हम बोलते हैं कि रिकवरी होना इज अ नॉर्मल थिंग। तो बहुत ज़्यादा इसमें जो मन में डर रहता है कि ब्रेन ट्यूमर है, अब तो ये दोबारा काम पे नहीं जा पाएगा, चल नहीं पाएगा, वो एक मैं बोल सकता हूँ कि 2026 में तो उसको हम बोल सकते हैं मिथ है। मतलब वो गलत धारणा है कि ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी के बाद आप ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे। सर्जरी का एम ही यही है कि वो एक अपनी नॉर्मल सामान्य जिंदगी जी सके। हाँ, कुछ रेस्ट्रिक्शन रहेंगे, जैसे हम बोलते हैं कि आपकी ब्रेन की सर्जरी हुई है तो आपको फिट्स आने या कुछ खतरा है, तो जैसे ड्राइविंग हो गया या फिर कुछ ऐसे ऊंचाइयों पे काम करना है, कंस्ट्रक्शन साइट वर्कर है वो, और दूसरा स्विमिंग, ये 2-3 चीज में हम बोलते हैं 6 महीना साल भर आपको अवॉइड करना अच्छा है।
0: डॉक्टर साहब, फिट्स का नाम आपने लिया तो हमारे जहन में एक बात आई। हमने कई लोगों को देखा है कि क्या हुआ, अचानक चक्कर आया, फिट्स आ गए, लेकिन वो बाकी जिंदगी भर आराम से काम करते हैं, उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती। तो मतलब फिट्स आना यानी ब्रेन ट्यूमर होना
1: एक एक
0: जरूरी?
1: लक्षण है उसका। काफी बार हमने MRI किया, पेशेंट को फिट्स आया था, MRI करके देखे, MRI एकदम नॉर्मल है। तो MRI करने का मेन रोल वही है कि उसमें कुछ जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं, मतलब ब्रेन का ढांचा ही बदल गया है क्या, वो देखने के लिए।
0: जी
1: बट नॉर्मल MRI है और आपको फिट्स नहीं आएगा ऐसा नहीं है।
0: जी
1: तो दाएं और बाएं ब्रेन का आपस में जो कनेक्शन है
0: जी
1: वो कहीं कुछ हिल गया है, या फिर बचपन से ही उनका ब्रेन का कुछ डेवलपमेंट किसी हिस्से में अच्छे से हुआ ही नहीं है, उससे ही फिट्स आते। तो सारे फिट्स मतलब ब्रेन ट्यूमर ही होंगे ऐसा नहीं है। इनफैक्ट बहुत कम मरीज ऐसे होते हैं जिसको फिट्स आया इसलिए उन्होंने डॉक्टर को दिखाया और उससे ब्रेन ट्यूमर डायग्नोज हुआ।
0: जी
1: तो उसमें ब्रेन में कुछ हिस्से हैं जिसको हम बोलते हैं टेम्पोरल लोब, कान के ऊपर वाला जो हिस्सा है वो काफी सेंसिटिव रहता है ब्रेन का,
0: जी जी
1: तो वहां अगर कुछ गांठ होता है किसी को तो उसमें फिट्स आना काफी कॉमन बीमारी है।
0: मतलब ब्रेन में गांठ भी एक बीमारी है,
1: करेक्ट करेक्ट,
0: तो
1: उसे
0: उसके क्या लक्षण है?
1: उसी को हम ट्यूमर बोलते हैं
0: ट्यूमर
1: गांठ।
0: वही
1: तो
0: है
1: बेसिकली कैंसर ही ब्रेन ट्यूमर ऐसा नहीं है,
0: जी।
1: जैसे बाकी के शरीर में कहीं पे भी हाथ में कुछ सूजन आ जाए कुछ भी
0: हाँ
1: हो, ब्रेन में कहीं पे भी कुछ गांठ दिखे तो बताने के लिए उसको हम बोलते हैं ब्रेन ट्यूमर है। बट ब्रेन ट्यूमर ही कैंसर है ऐसा नहीं है, दो अलग अलग चीज है।
0: जी। तो दोनों में कितनी समानता है और कितना कैसा अंतर है, कि कैसे पता चले कि कैंसर है कि ब्रेन ट्यूमर है?
1: MRI हमको एक वो इजीली जो बोलते हैं हम डिस्टिंग्विश कर ही देता है कि कैंसर है कि नहीं है,
0: और
1: तो
0: फिर
1: उसके
0: इसका
1: हिसाब से इलाज डिसाइड होते हैं। सादा गांठ है, मरीज को बहुत दिक्कत नहीं है, 2-3 साल हमने फॉलोअप कर लिया, साइज उतने पे ही रुका हुआ है, और मेन उसको दर्द नहीं है, फिट्स नहीं आ रही है, साइज ट्यूमर का बढ़ नहीं रहा है, तो ऐसे मरीजों को सर्जरी करने की जरूरत नहीं है। तो उसमें
0: जी
1: उनको सिर्फ ऑब्जर्वेशन बोलते हैं, मतलब आप सालाना आके दिखाते रहिए, कभी भी ऐसा लगा दिक्कत बढ़ते जा रही है तो सर्जरी का ऑप्शन दिया जाएगा।
0: डॉक्टर साहब, हमें बताइए कि किन उम्र के लोगों में ब्रेन ट्यूमर का खतरा ज्यादा होता है, या महिलाओं में ज्यादा, पुरुषों में ज्यादा, ऐसा कुछ
1: ऐसा
0: कहें?
1: जेंडर के हिसाब से तो नहीं है अभी, बट एवरेज एज जो हम देखते हैं वो 40 से 60 वाला एज इज वेरी कॉमन। बट एक पीडियाट्रिक ब्रेन ट्यूमर बोलते हैं, मतलब बच्चों में ब्रेन की बीमारी, समहाउ दैट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। तो एक 15 से 20% पॉपुलेशन ऐसा है, 100 ब्रेन ट्यूमर अगर हम करें तो 15 से 20% जो पेशेंट है वो बच्चों में दिखाया। बच्चों में जब ट्यूमर होता है तो वो कैंसर होने के चांसेस थोड़े ज्यादा रहते हैं। तो बच्चों में जब भी हो दर्द तो उसको हम बोलते हैं अवॉइड मत कीजिए, एक बार आके उनको दिखा देना जरूरी है। एवरेज एज एज ऑफ नाउ 2026 में एक 50-60 वाला एज जो है वो कॉमन। बट ऐसा मेल फीमेल कोई रिलेशन नहीं, खाने
0: जी
1: पीने से कोई संबंध, आंसर इज नो। तो अगर सबसे पहले जब पेशेंट को ब्रेन ट्यूमर डाइग्नोज हो, फैमिली का पहला क्वेश्चन क्या रहते हैं? सर ये तो स्मोकिंग नहीं करते हैं, अल्कोहल नहीं लेते हैं, कुछ खराब नशा नहीं, तो इनको ट्यूमर कैसे हुआ? हमारी तरफ से एक यूनिवर्सल आंसर कि अभी तक ब्रेन ट्यूमर का अगर आप पूछो कारण क्या है, किसी को नहीं पता।
0: जी
1: जैसे अगर स्मोकिंग और लंग कैंसर, इसका एक काफी स्ट्रांग कनेक्शन है, बट वैसे ही ब्रेन ट्यूमर के लिए आप पूछो कोई कारण है, आंसर इज नो। एक दो जेनेटिक बीमारियां हैं बट उसके नंबर्स इतने कम हैं फॉर्चुनेटली कि उसका कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं हो पाता है।
0: जी, तो ब्रेन स्ट्रोक और ब्रेन ट्यूमर दोनों में क्या डाइट का ख्याल रखना जरूरी होता है? किस तरह की डाइट
1: स्ट्रोक,
0: जो?
1: यस, स्ट्रोक में वही है कि जैसे बहुत ऑयली, बहुत मीठा, शुगर बढ़ते जा रहे हैं तो उसके कारण आपको स्ट्रोक के चांसेस बढ़ते हैं। बट ट्यूमर में समहाउ कोई डायरेक्ट इसका खाने का कनेक्शन नहीं है अभी तक।
0: जी, और ट्यूमर मस्तिष्क के ब्रेन के किस हिस्से में है, तो इसका इलाज पर भी असर पड़ता है?
1: 100% यस। जब भी ट्यूमर एकदम बाहरी सतह पे है, जिसको हम बोलते हैं मेनिंजोमा, तो वो
0: जी
1: सब निकालना आसान, कॉम्प्लिकेशन कम, और उसके जो लॉन्ग टर्म क्योर रेट्स हैं वो ऑलमोस्ट पेशेंट मरीज क्योर हो जाते हैं। जबकि ब्रेन के जो अंदर ट्यूमर है, जो ब्रेन का पार्टीशन है, अगर उसके बीचों बीच है तो वहां तक पहुंचना थोड़ा सर्जिकली, जो हमारे लिए टेक्निकली कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर बोलते हैं, निकालने के बाद भी मरीज को कुछ ना कुछ हाथ पैर के मूवमेंट में दिक्कत हो सकती है और ट्यूमर पूरी तरह से निकाल नहीं पाते, तो ऐसे मरीजों में आगे जाके और कुछ ना कुछ इलाज देना पड़ता है। तो वो कुछ ना कुछ में सबसे कॉमन क्या चीज़ है? रेडिएशन। ब्रेन में अभी भी जो इंजेक्टेबल कीमो बोलते हैं, जैसे बाकी कैंसर में हम सुनते हैं कि 10 साइकिल 12 साइकिल कीमोथेरेपी के इंजेक्शन दिए गए, ब्रेन में समहाउ वो उतने कॉमन अवेलेबल नहीं है। तो इसमें जो कीमो दी भी जाती है वो सब टैबलेट फॉर्म में है जो आसानी से मरीज ले सकता है।
0: तो अब श्रोताओं को बताइए कि क्या सावधानी बरती जाए कि ब्रेन स्ट्रोक और ब्रेन ट्यूमर से अपनी जिंदगी को बचाया जा सके।
1: तो ट्यूमर को तो ऐसा एक प्रिवेंट नहीं किया।

0: किया जा सकता है, बट डेफिनेटली स्ट्रोक को प्रिवेंट करना, एक अभी भी मरीज खुद से अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं,
1: जी
0: जैसे उनको पहले से ही डायबिटीज़ बीपी का बीमारी कंफर्म हो गया, तो जो भी आपके रेगुलर फिजिशियन हैं, जो आपके पारिवारिक डॉक्टर हैं, उनको टाइम टू टाइम, जैसे 60 के ऊपर उम्र है तो 3 महीने 6 महीने में जाके दिखाते रहिए, दिक्कत नहीं है, फिर भी स्ट्रोक होने के बाद वो नहीं देखेंगे, वो बोलेंगे आप
1: जी
0: जाके अब न्यूरो को दिखाइए, बट स्ट्रोक आने के पहले आप रेगुलरली अपने टच में रहिए फिजिशियन के। पेशेंट का एक कॉमन कंप्लेन है कि मैं तो डायबिटीज़ की दवाई खा रहा हूँ, बीपी की दवाई खा रहा हूँ, फिर भी कैसे बढ़ गया मेरा बीपी। तो जो दवाई आपने 40-50 साल की उम्र में खाना शुरू की है, आपको वही डोज 60 साल तक कंटिन्यू करना, ऐसा नहीं है। हो
1: जी
0: सकता है उसका डोज बढ़ाना पड़े, हो सकता है उसका डोज कम करना पड़े, तो उसी के लिए हम बोलते हैं अपने फैमिली डॉक्टर को छोड़ना नहीं है, उनके टच में रहिए, फैमिली फिजिशियन। दूसरा, जब भी सिम्टम्स आए कुछ, तो उसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। हम बोलते हैं इट इज़ बेटर टू ओवर ट्रीट और ओवर डाइग्नोज रादर देन उसको मिस करना,
1: जी
0: क्योंकि एक
1: जी
0: बार स्ट्रोक हो गया तो ब्रेन का वो हिस्सा काम नहीं करता है। जो भी हम रिकवरी उम्मीद करते हैं वो कैसे होता है, इट इज़ विद द हेल्प ऑफ फिजियोथेरेपी। तो
1: जी
0: जो
1: जी
0: आजू बाजू का जो हेल्दी ब्रेन है वो कोशिश करेगा कि इसका ब्रेन का फंक्शन टेक ओवर कर ले।
1: जी जी
0: तो एक तो फैमिली डॉक्टर का जो कंसेप्ट है उसको छोड़ना नहीं चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज, नशा जितना कम बोलो या उससे अच्छी चीज़ें, नशा बंद कर दो, बहुत फ़ायदा। स्मोकिंग, अल्कोहल, इन दोनों
1: बिल्कुल
0: में कुछ भी फ़ायदा तो नहीं है। स्मोकिंग ब्रेन के लिए काफ़ी ख़राब चीज़ है, जितना ब्रेन में उसका ब्लड का फ्लो है वो कम होते जाते हैं, खून की नलियाँ जो है सिकुड़ती जाती है, तो वो बंद करना, नियमित रूप से एक्सरसाइज, और बहुत ज़्यादा जंक फूड एंड ऑयली कम कर।
1: जी, तो ये जो जंक फूड की बात कही है, तो हमारे बहुत सारे यंग श्रोता जो जेनजी जो
0: करेक्ट
1: सुन रहे हैं
0: करेक्ट
1: और नियमित रूप से जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, चॉकलेट खाते हैं, तो उनके लिए
0: करेक्ट
1: बहुत फायदेमंद बात है ये।
0: करेक्ट तो एक है कि वो जंक फूड इजीली अवेलेबल है, ऑलमोस्ट
1: जी
0: सारे छोटे सिटी में भी काफी सस्ते में मिल जाता है,
1: जी
0: बनाने में उनको समय नहीं लगता है, आपने लिया खाया, और दिक्कत है कि उनका इमिडिएटली कोई साइड इफेक्ट दिखता नहीं है, तो इसीलिए उनका सोचना ऐसा है जेंजी का कि ये तो इजीली है, सब लोग खा रहे हैं तो मुझे भी क्या
1: जी
0: ही
1: जी
0: होगा, बट उसका जो नुकसान है वो कुछ समय बाद आता है।
1: जी डॉक्टर अजीत, चलते चलते एक बात बताइए कि सिरदर्द जो है बड़ी कॉमन बात है, आपने चर्चा भी की है, लेकिन कई लोगों को सिरदर्द सुबह उठते से ही होता है, कई लोगों को खाने के बाद होता है, कई लोगों को खाने से पहले होता है, कई लोग शाम को सिरदर्द की तकलीफ बताते हैं, और सब लोग अपना अपना क्राइटेरिया बना लेते हैं कि मेरा इस वजह से हो रहा है, तो
0: ना
1: इस बारे में जरा हमारे श्रोताओं को आगाह कीजिए,
0: तो
1: जरा
0: हर
1: बताइए।
0: पेशेंट हमारे लिए एक्चुअली अलग है, तो वो
1: जी
0: बोलते हैं ना कि हमारे अंकल को हुआ था हम भी वही दवाई खा ले क्या।
1: जी जी
0: अब ऐसे बाकी फैमिली मेंबर्स को किस कारण से हुआ था, आपको किससे हुआ है, हर एक का शरीर अलग अलग है, हर एक के हॉर्मोन्स, एंजाइम, सबका अलग अलग, पाचन शक्ति जो बोलते हैं अलग। तो जो पैटर्न ऑफ हेडेक हम बोलते हैं, जैसे सुबह ही हो रहा है, तो अगर सब कुछ उन्होंने अपने लेवल पे कोशिश कर लिया, नहीं आराम हो रहा है, तो हम बोलते हैं रात के वक्त दवाई दो जिसका असर इतने टाइम तक बना रहता है। तो हर हेडेक बिना दवाई के ठीक हो ही जाएगा ऐसा भी नहीं है। आप क्या काम करते हो, सोने का समय क्या है आपका, आप कितने टाइम तक स्क्रीन देख रहे हो, आपका आने जाने का रूटीन कैसा है, खाने का समय, उससे बहुत फर्क पड़ता है। तो हर जगह एज अ डॉक्टर हम उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। मैं बोलूंगा कि आप रात को सो जाइए, वो पेशेंट बोलेगा सर मेरा तो ड्यूटी ही रात के समय नाइट टाइम है, तो उसमें फिर अदर देन दवाइयाँ बहुत ज़्यादा हमारे पास ऑप्शन नहीं रहता है। तो जैसे बोलना मेरे लिए बहुत आसान है कि आप इतने बजे खा लो, इतने बजे सो जाओ, बट फॉर अ प्रैक्टिकल पर्पज हर एक के लिए फॉलो करना मुश्किल होता है।
1: जी
0: नाइट वॉचमैन है, नाइट में कॉल सेंटर में काम कर रहे हैं, तो जो दवाइयाँ भी हम देते हैं कि आप ये खा के सो जाओ, वो उसको फॉलो करना मुश्किल है।
1: जी
0: तो किसी हद तक यस वी कैन मैनेज, बट नॉट एप्लीकेबल फॉर एवरीवन।
1: जी
0: दवाइयों का फिर डोज जो है वो हमको डोज एज वेल एज टाइमिंग
1: जी
0: मॉडिफाई करना है। बट एक है कि ये दवाइयाँ इतनी सेफ है, मतलब उससे साइड इफेक्ट ना हो और उससे कहीं भी आप डिपेंडेंट ना रहो, वो हमारा टारगेट रहता है।
1: जी एक और बात हमारे जहन में आई है, वो ये कि कुछ लोग ये शिकायत करते हैं कि सो रहे हैं, जो आपने कहा ना कि जो पैर चलने में थोड़ा तकलीफ दे रही है, सामान्य रूप से हाथ पैर नहीं काम कर रहे, कुछ लोगों को ये देखा गया है, शिकायत करते हैं कि सोते समय उनके पैर जैसे उड़ते हैं हवा में, मतलब वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, वो मूवमेंट अजीब सा होता है,
0: करेक्ट, तो उस
1: तो ये क्या कोई न्यूरो
0: न्यूरो रिलेटेड
1: प्रॉब्लम?
0: ही है, उसको एक अलग से स्पेशलिटी है न्यूरो के अंदर, उसको हम बोलते हैं मूवमेंट डिसऑर्डर स्पेशलिटी। तो जैसे 60+ एज ग्रुप में हम देखते हैं पार्किंसंस करके बीमारी होती है, जिसमें शुरुआत होता है हाथ या पैर का सिर्फ कांपना, और धीरे धीरे कुछ साल में उनको इतना ज्यादा डिस्टर्बेंस होता है, मेडिकल टर्म में उसको बोलते हैं ट्रेमर्स, तो किसी को सिर्फ हाथ से शुरुआत होता है, किसी को सिर्फ पैर कांपने लगता है, तो ये एक अलग ही बीमारी है, ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा जो धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो गया। तो जहां से पैर की नस ब्रेन में शुरू होने वाली है, अगर वो ब्रेन ही आपका श्रिंक होते जा रहा है, तो उसमें से धीरे

0: धीरे ट्रेमर्स आने लगते हैं। अच्छी चीज़ ये है कि इसको दवाइयों से कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, आपने जो सिर्फ पैर का बताया उसको हम बोलते हैं रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। तो
1: जी
0: उसमें सिर्फ रात के समय पेशेंट के पैरों में जो है वो वाइब्रेशन बोलता है, मेडिकल टर्म उसको बोलते हैं फेसिकुलेशन, कोई ट्विचिंग, ये सब शब्द यूज़ करते हैं, बट ये दवाइयों से

0: अगली बार जब वो दिखाने आते हैं वो वीडियो भी दिखा दे तो हम उस चीज को डायग्नोज कर लेते हैं, बेसिक दवाइयों से उसका पूरा आराम हो जाता है
1: जी। तो जितने भी श्रोता सुन रहे हैं निश्चित रूप से इन बातों का बहुत फायदा उठाएंगे और हमें उम्मीद है कि ये बड़ी कारगर बातें आपने बताई हैं। डॉक्टर अजीत, विविध भारती के स्टूडियो में आप आए, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, आपका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं। नमस्कार।
0: चलो नमस्कार एवरीवन, थैंक यू।
1: थैंक यू।
2: सेहतनामा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे न्यूरोसर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र से ममता सिंह की बातचीत। चलने से पहले हम आपको बता दें, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग रीमा जोशी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: संगीत के साधक
1: ओ रे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की ओ।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन रात।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर।

0: And I'll bring you daily highlights of 20th edition of Asian Games 2026.
1: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
2: नमस्कार, आईची नागोया से खेलों की दुनिया की बड़ी हलचल के साथ एक बार फिर से हम हाजिर हैं। जापान की धरती पर सजे एशियन गेम्स के मैदानों में आज मुकाबले और भी दिलचस्प रहे। शुरुआती मुकाबलों से मिले रोमांच के बाद अब पदकों की असली रेस रफ्तार पकड़ चुकी है। हर मैदान पर चुनौती बड़ी है, हर मुकाबला अहम है और हर खिलाड़ी की नज़र अपने लक्ष्य पर है। एशिया के 45 देशों से पहुंचे दिग्गज खिलाड़ियों के बीच भारत के खिलाड़ी भी पूरी ताकत के साथ मैदान में हैं। खेलों का ये महासंग्राम आगे बढ़ रहा है और इसके साथ बढ़ रही है देशवासियों की धड़कन। तो आइए जानते हैं आईची नागोया से आज भारत के खेल अभियान का पूरा हाल। सबसे पहले नज़र डालते हैं दिन की बड़ी सुर्खियों पर। एमएमए में भारत का ऐतिहासिक पहला पदक, सुचिका तारियाल ने जीता कांस्य। शूटिंग में भारत का शानदार निशाना, 10 मीटर एयर राइफल में 3 पदक, एशियन गेम्स में कुल 5 शूटिंग मेडल। महिला हॉकी में गोलों की बरसात, भारत ने इंडोनेशिया को 17-1 से हराया, 3 खिलाड़ियों ने लगाई हैट्रिक। कबड्डी में चैंपियन वाली शुरुआत, महिला और पुरुष टीमों ने जीते अपने अपने मुकाबले। वुशू में भारतीय खिलाड़ियों की चुनौती अभी जारी है। टेबल टेनिस मुकाबलों में पुरुष और महिला टीमों ने पाकिस्तान पर पाई आसान जीत। सेपेक टेक्रॉ में रोमांचक मुकाबले, टीम रेगू के ग्रुप मुकाबले में जापान ने भारत को 2-1 से हराया। अब मलेशिया से होगी अगली भिड़ंत। आईची नागोया में भारत का खेल अभियान जारी है, कहीं पदकों की चमक, कहीं बड़ी जीत और कहीं अगली चुनौती का इंतजार। सबसे पहले बात उस पदक की जिसने एशियन गेम्स में भारतीय एमएमए इतिहास में नया अध्याय जोड़ दिया। एशियन गेम्स 2026 में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स यानी एमएमए में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया। भारत की सुचिका तारियाल ने महिलाओं की ट्रेडिशनल 60 किलोग्राम कैटेगरी में कांस्य पदक हासिल किया। सुचिका का सेमीफाइनल मुकाबला तेओ हुई हुन के खिलाफ हुआ। मुकाबला बेहद कड़ा रहा। मैच के बाद रिव्यू में मुकाबला ड्रॉ घोषित किया गया। इसके बाद सुबह के वेइन नियम के आधार पर विजेता का फैसला हुआ। सिंगापुर की खिलाड़ी का वजन सुचिका से 700 ग्राम कम था, इसीलिए उन्हें विजेता घोषित किया गया और सुचिका को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। लेकिन यहां तक पहुंचना भी अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। इससे पहले सुचिका ने मंगोलिया की खिलाड़ी को 2-0 से हराकर पदक पक्का किया था। इससे पहले पुरुषों के ट्रेडिशनल 77 किलोग्राम वर्ग में भारत के वरुण सान्याल को अनफिट घोषित कर दिया गया था, जिसकी वजह से वो अपना क्वार्टर फाइनल मुकाबला नहीं खेल पाए। एमएमए के बाद अब रुक करते हैं शूटिंग रेंज की, जहां भारत के लिए आज का दिन बेहद खास रहा। पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में भारत ने टीम स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता, जबकि व्यक्तिगत मुकाबले में हिमांशु ढिल्लन ने सिल्वर और रुद्राक्ष पाटिल ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। पूरी रिपोर्ट के लिए चलते हैं अभिनव पुंशी के पास।
3: फैंटास्टिक डे फॉर इंडिया एज फार एज शूटिंग इज कंसर्न्ड। आईची नगोया में एशियन गेम्स 2026 में इंडिया वन द मेंस 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट में इंडिया को मिला सिल्वर मेडल। द टीम कंप्राइज ऑफ रुद्रांश पाटिल, हिमांशु ढिल्लन एंड पार्थ माने। इसी कंपटीशन में चाइना ने गोल्ड मेडल लिया और एक रिकॉर्ड हॉल के साथ और साउथ कोरिया को मिला ब्रॉन्ज मेडल। मगर बस इसी कंपटीशन में नहीं, हमारे इंडियन शूटर्स मेड अस प्राउड इन द मेंस 10 मीटर एयर राइफल इंडिविजुअल फाइनल एज वेल। रुद्राक्ष पाटिल एंड हिमांशु ढिल्लन वॉज इन द फाइनल टिल द लास्ट मिनट एंड गेव सम ग्रेट कॉम्पिटिशन to China's Zhang Jiao. Magar Rudansh Patil had to be satisfied with the bronze, while Himanshu Dhillon, jo apna Asian Games ka

0: डेब्यू कर रहे थे, उनका स्कोर 252.4 से उनको मिला एक सिल्वर मेडल. सो अ फैंटास्टिक स्टार्ट फॉर द इंडियन शूटर्स सो फार. दे हैव बीन सेटिंग आइची नगोया ऑन फायर और इंडियन शूटिंग कंटिंजेंट से अभी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस बाकी हैं. याद दिलाएं, हमारी ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट मनु भाकर इज आल्सो गोइंग टू बी इन एक्शन प्रीटी सून. वी आर होपिंग फॉर ग्रेट थिंग्स फ्रॉम हर एज वेल. सो ग्रेट डे फॉर इंडिया इन शूटिंग एट आइची नगोया एशियन गेम्स 2026.
1: शूटिंग के बाद अब बात उस खेल की जिसमें ताकत, रणनीति और सांस रोक देने वाला रोमांच एक साथ देखने को मिलता है. पुरुष कबड्डी में भारत ने जापान को 49-24 से हराकर ग्रुप मुकाबले में शानदार जीत दर्ज की. वहीं महिला टीम ने भी बांग्लादेश को 42-21 से मात देकर अगले राउंड में जगह बना ली. पूरी जानकारी दे रहे हैं अभिनव झा.
2: भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने अपने अभियान की शानदार शुरुआत करते हुए ग्रुप ए के मुकाबले में मेजबान जापान को 49-24 से हराया. आइची नगोया में खेले गए इस मुकाबले में कप्तान सुनील कुमार की अगुवाई में भारत ने शुरुआत से ही दबदबा बनाए रखा. आशु मलिक की 3 अंकों वाली सुपर रेड ने भारत को शुरुआती बढ़त दिलाई, जबकि अर्जुन देशवाल, देवांग दलाल और अयान लोहचब ने भी रेडिंग में प्रभावशाली प्रदर्शन किया. भारतीय टीम ने पहले हाफ में जापान पर लगातार दबाव बनाते हुए 3 ऑल आउट किए और मध्यांतर तक 31-9 की बड़ी बढ़त हासिल कर ली. दूसरे हाफ में जापान ने बेहतर रणनीति के साथ वापसी करने की कोशिश की और इस हाफ में भारत के 18 अंक के मुकाबले 15 अंक अर्जित किए, लेकिन भारतीय डिफेंस ने नियंत्रण नहीं खोया और एक और ऑल आउट के साथ जीत सुनिश्चित कर दी. भारत ने अंततः 25 अंकों के अंतर से मुकाबला अपने नाम किया और अपने एशियन गेम्स खिताब की रक्षा की शुरुआत जीत के साथ की. एशियन गेम्स में कबड्डी के इतिहास की बात करें तो भारत का इस खेल में लंबे समय से दबदबा रहा है. कबड्डी 1990 बीजिंग एशियन गेम्स में पुरुषों के पदक खेल के रूप में शामिल हुई और भारत ने उसी संस्करण में स्वर्ण पदक जीतकर अपने अभियान की शुरुआत की थी. इसके बाद भारत ने पुरुष कबड्डी में लगातार 2014 के संस्करण तक स्वर्ण पदक हासिल किए. मात्र 2018 के जकार्ता एशियन गेम्स में उन्हें कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा, लेकिन एक बार फिर 2022 हांगझाउ एशियन गेम्स में भारत ने स्वर्ण पदक जीता. इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बीच 2026 में जापान के खिलाफ मिली जीत भारतीय टीम के खिताबी अभियान के लिए महत्वपूर्ण शुरुआत रही. वहीं अब बात करते हैं भारतीय महिला कबड्डी टीम की, जिसने 21 सितंबर को एशियन गेम्स में अपने अभियान की शुरुआत बांग्लादेश के खिलाफ ग्रुप ए मुकाबले से की, जहां भारतीय महिला टीम ने अपना दबदबा दिखाते हुए 42-21 से मैच अपने नाम किया. भारत ने मैच की शुरुआत से ही अटैकिंग अप्रोच रखी, जिसका फायदा भारत को फर्स्ट हाफ में ही 21-10 की बढ़त से मिला. वहीं दूसरे हाफ में भी भारतीय खिलाड़ियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी और 21-11 की बढ़त के साथ दूसरा हाफ खत्म किया, जिसके फलस्वरूप भारतीय महिला टीम ने 42-21 से एक आसान जीत अपने नाम की. भारत इस प्रतियोगिता में गत चैंपियन के रूप में उतरा है और 2022 हांगझाऊ एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम का लक्ष्य इस बार भी खिताब बरकरार रखना है. भारतीय टीम की कप्तानी पुष्पा राणा कर रही हैं, जबकि सोनाली शिंगाटे उपकप्तान हैं. भारत ने अब तक एशियन गेम्स की महिला कबड्डी में 3 स्वर्ण पदक जीते हैं और 2018 में रजत पदक हासिल किया था. इस अभियान में अगली बड़ी चुनौती 23 सितंबर को ईरान के खिलाफ होगी, जबकि 24 सितंबर को भारतीय महिला टीम का सामना जापान से होना है.
1: कबड्डी में भारतीय खिलाड़ियों ने दम दिखाया तो बैडमिंटन कोर्ट पर भी जीत का सिलसिला जारी रहा. पुरुष टीम ने बांग्लादेश को 3-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है. आइए सुनते हैं साक्षी की रिपोर्ट.
3: The Indian shuttlers gave a brilliant start to India in the world of badminton in the ongoing Asian Games 2026 to help India advance to the quarterfinals. Lakshya Sen gave India the perfect start against Bangladesh in the men's team first round tie, defeating Eman Jaman in straight games 21-4, 21-12 and thereby putting India ahead in the tie. Then came Ayush Shetty, who secured another point for India in the men's team first round badminton tie against Bangladesh, defeating Gaurav Singha in straight games 21-4, 21-13, thereby taking the margin of victory overall team tie. And finally, Kidambi Srikanth gave India another strong start in the third match of the men's team badminton tie against Bangladesh, defeating Al-Amin Jumar in the opening game 21-15 and later 21-9, thereby helping India secure a commanding position, defeating Bangladesh 3-0 and setting themselves up for the quarterfinals to be played against Japan.
1: अब रैकेट की तेजी से निकलते हैं हॉकी के मैदान पर, जहां भारत ने गोलों की बरसात कर दी. महिला हॉकी टीम ने इंडोनेशिया को 17-1 से हराकर पूल बी में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा. भारत की ओर से दीपिका, नवनीत कौर और ऋतुजा पिसाल ने हैट्रिक दर्ज की. जानकारी दे रहे हैं अभिनव झा.
2: भारतीय महिला हॉकी टीम ने अपने शानदार अभियान को जारी रखते हुए सोमवार को

0: पूल बी के दूसरे मुकाबले में इंडोनेशिया को 17-1 से करारी शिकस्त दी। इससे पहले भारत ने अपने शुरुआती मैच में उज्बेकिस्तान को 19-0 से हराया था। इस जीत के साथ भारत ने लगातार दूसरी जीत दर्ज की और दो मैचों में 36 गोल किए। इंडोनेशिया के खिलाफ भारत की ओर से 7 गोल पेनल्टी कॉर्नर और 10 गोल फील्ड प्ले से आए। दीपिका ने हैट्रिक लगाकर टूर्नामेंट में अपने गोलों की संख्या दो मैचों में 11 कर ली। नवनीत कौर और ऋतुजा ददासो पिसाल ने भी हैट्रिक पूरी की, जबकि लाल रेम सियामी, सुनेलिता टोपो और साक्षी राणा ने 2-2 गोल किए। कप्तान सलीमा टेटे और इशिका ने 1-1 गोल किया। भारत ने पहले क्वार्टर में दीपिका, सुनेलिता, लाल रेम सियामी और ऋतुजा के गोल से 4-0 की बढ़त बनाई। दूसरे क्वार्टर में लाल रेम सियामी, ऋतुजा, साक्षी, दीपिका और सुनेलिता ने गोल किए, जिससे हाफ टाइम तक भारत 9-0 से आगे था। तीसरे क्वार्टर में इंडोनेशिया की इनेस आदित्य ने 1 गोल किया, लेकिन भारत ने सलीमा, नवनीत, इशिका, ऋतुजा और दीपिका के लगातार 5 गोलों से तीसरे क्वार्टर के अंत तक 14-1 की बढ़त बना ली। अंतिम क्वार्टर में नवनीत ने 56वें और 57वें मिनट में 2 गोल कर अपनी हैट्रिक पूरी की, जबकि साक्षी ने अपना दूसरा गोल किया और भारत ने 17-1 से मुकाबला अपने नाम कर लिया। इस मुकाबले में अनुभवी भारतीय गोलकीपर सविता ने भी ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। 321 सीनियर अंतर्राष्ट्रीय मैचों के साथ वह भारत की सबसे अधिक कैप हासिल करने वाली महिला हॉकी खिलाड़ी बन गई और उन्होंने वंदना कटारी का रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया। लगातार 2 मैच खेलने के बाद भारत को मंगलवार को आराम मिलेगा और टीम बुधवार को थाईलैंड के खिलाफ अपना अगला पूल बी मुकाबला खेलेगी।
1: अब चलते हैं तैराकी की ओर, जहां भारतीय तैराकों ने आज अपनी अपनी चुनौती पेश की और अपने अपने मुकाबलों में जद्दोजहद करते हुए नजर आए। आइए सुनते हैं पूरी जानकारी साक्षी मंडवाल से।
2: It was not a good day for Indian swimmers as India's Srihari Nataraj finished 10th in the men's 50-meter backstroke final at the Asian Games 2026, clocking 25.52 seconds in the 10 swimmer medal race. China's Jiao Zhu clinched the gold medal with a new Asian Games record of 24.04 seconds, while compatriot Zicheng Wong took silver in the 24.49 seconds. South Korea's Jihan Yoon completed the podium with a bronze winning time of 24.54 seconds. All the other swimmers, Rishabh Das, Akash Mane, Heer Jitesh Shah and Dhanush Suresh failed to qualify for the finals of their respective events. Sirf yahi nahi dosto, men's 4x200 meter freestyle relay mein bhi Bharatiya swimming team ka jo pura contingent hai, yani Sajan Prakash, Anish Sunil, Kumar Gowda, Vedant Madhavan and Dakshan Shashi Kumar failed to qualify for the finals also. तो अगर देखिए ओवरऑल तो भारतीय स्विमर्स के लिए आज का दिन बहुत ही निराशाजनक साबित हुआ ऑन गोइंग एशियन गेम्स 2026 में।
1: अब पानी के खेल से निकलकर चलते हैं एक ऐसे खेल की ओर जिसमें पैर ही बनते हैं सबसे बड़ा हथियार, सेपेक टकराव। सेपेक टकराव में पुरुष टीम रेगु में जापान ने भारत को 2-1 से हरा दिया। विस्तृत जानकारी के लिए सुनते हैं अभिनव झा की रिपोर्ट।
0: भारत के पुरुष सेपेक टकराव रेगु टीम को मेजबान जापान के खिलाफ ग्रुप बी मुकाबले में 1-2 से हार का सामना करना पड़ा। सेपेक टकराव में खेल का प्रारूप वॉलीबॉल जैसा होता है, लेकिन इसमें खिलाड़ियों को गेंद को हाथों से छूने की अनुमति नहीं होती। खिलाड़ी मुख्य रूप से पैर, घुटने, सिर और शरीर के अन्य हिस्सों का इस्तेमाल करके गेंद को नेट के ऊपर से विपक्षी पाले में भेजते हैं। रेगु प्रारूप में प्रत्येक टीम में 3 खिलाड़ी कोर्ट पर होते हैं और उद्देश्य गेंद को विपक्षी कोर्ट में इस तरह गिराना होता है कि सामने वाली टीम उसे वापस ना कर सके। एक टीम गेंद को अधिकतम 3 बार छूकर उसे नेट के पार भेज सकती है। सर्विस के बाद रैली जारी रहती है और हर रैली पर अंक मिलता है। सेपेक टकराव में जो टीम 3 में से 2 मैच जीतती है वो मुकाबला जीती है और हर मैच में 15 अंक के गेम खेले जाते हैं। जिसने पहले 2 गेम अपने नाम किया उसने 1 मैच अपने नाम किया। भारत ने शुरुआती रेगु मैच 2-0 से जीता, जिसमें भारतीय टीम ने दोनों गेम 15-13 और 15-9 से अपने नाम किए। दूसरा मैच कांटे की टक्कर का रहा, जिसमें जापान ने वापसी करते हुए पहला गेम 15-12 से अपने नाम किया, वहीं दूसरा गेम भारत ने 17-15 से अपने नाम किया। लेकिन तीसरे गेम में जापान ने बाजी मारी और 15-11 से जीतकर इस गेम के साथ मैच जीता, जिसके बदौलत ये मुकाबला तीसरे और निर्णायक मैच की ओर बढ़ा, जहां जापान ने एक तरफा तरीके से 15-9 और 15-12 से ये मैच जीतकर मुकाबले में बाजी मार ली। सेपेक टकराव 1990 बीजिंग एशियन गेम्स से ये नियमित स्पर्धा के रूप में शामिल रहा है। भारत ने एशियन गेम्स में इस खेल में अपना पहला पदक 2018 जकार्ता पालेमबांग पुरुष रेगु में कांस्य के रूप में जीता और 2022 हांगझोउ में भी कांस्य पदक हासिल किया। इस प्रकार भारत के नाम एशियन गेम्स सेपेक टकराव में अब तक 2 कांस्य पदक हैं।
1: अब बात टेबल टेनिस की। भारत की महिला और

0: पुरुष दोनों टीमों ने पाकिस्तान के खिलाफ 3-0 की जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही भारत ने नॉकआउट चरण की राह भी मजबूत कर ली है। पूरी रिपोर्ट दे रही हैं साक्षी मांडवाल।
1: इन टेबल टेनिस बोथ द वुमेन एंड मेंस मैचेस हैपन टुडे। महिलाओं के टेबल टेनिस मुकाबले की अगर बात करें तो इसमें भारत का मुकाबला हुआ पाकिस्तान के साथ, जिसमें महिला टेबल टेनिस टीम ने पाकिस्तान को 3-0 से वुमेन्स टीम टेबल टेनिस टाइप में हरा दिया। श्री जाकुला सील्ड द विक्ट्री विद स्ट्रेट गेम्स विन ओवर फातिमा खान इन अ स्कोर लाइन दैट रेड लाइक 11-4, 11-4, 11-5 एंड थereby इंडिया फिनिश्ड एज ग्रुप एफ विनर्स एंड एडवांस टू द प्री क्वार्टर फाइनल्स। इस पूरे मुकाबले में एक बहुत जरूरी नाम जिसको हम बिल्कुल भी भूल नहीं सकते हैं, वो है सिंड्रेला दास का। सिंड्रेला दास का इस वर्ष एशियन गेम्स में डेब्यू हुआ है और उन्होंने पाकिस्तान की कलसूम खान को 11-6, 11-7, 11-5 से आज शिकस्त दी, जिसकी वजह से भारत को एक बहुत ही कमांडिंग पोजीशन में एक स्ट्रॉन्ग एडवांटेज पाकिस्तान के ऊपर मिल गया 2-0 का। एंड देन केम श्रीजा कुला हु वाज एबल टू कन्वर्ट दैट 2-0 कमांडिंग पोजीशन टू अ 3-0 विक्ट्री, thereby सीलिंग इंडियाज विन इन आवर फेवर। इंडिया विल नाउ बी फेसिंग थाईलैंड टुमारो इन द प्री क्वार्टर फाइनल मैच। Now let's talk about the men's table tennis match that happened today, in which India once again came face to face with Pakistan and defeated Pakistan with a scoreline that was exactly the same as the women's. Well, I'm meaning to say that India defeated Pakistan 3-0 in the men's table tennis group match at the Asian Games 2026. In match number 2, Sathyan Gunasekaran defeated Abbas Khan 11-1, 11-8, 11-9, thereby sealing match number 2 also in his name, 3-0. And in match number 3, Pius Jain defeated Muhammad Khan 11-2, 11-5, 11-7, thereby sealing the third match in his name and also leading India to its victory over Pakistan by winning the third match 3-0. And thereby the Indian men's table tennis team also defeated Pakistan 3-0 in a clean sweep victory.
0: अब रुक करते हैं वुशु का, जहां तकनीक, संतुलन और हर मूवमेंट के साथ पदक की उम्मीद जुड़ी है। आज के दिन में महिलाओं के नैनक्वान इवेंट में भारत की लैंगनन टाम्बी देवी पदक की दौड़ में बनी हुई है और इनका फाइनल मुकाबला कल खेला जाना है। इससे पहले महिलाओं की चांगक्वान फाइनल में भारत की नियमन वांगसू ने हिस्सा लिया। 16 खिलाड़ियों के फाइनल में उन्होंने 9.573 का स्कोर हासिल किया और 15वें स्थान पर रहीं। इसके बाद वुशु के लिए आगे की चुनौती में महिला 60 किलोग्राम सांडा के राउंड ऑफ 16 में नाउरेम रोशिबिना देवी का मुकाबला बांग्लादेश की मो शिखा खातून से हुआ, जिसे विन बाय पॉइंट डिफरेंस से नाउरेम रोशिबिना देवी ने जीत लिया। वहीं पुरुषों के 56 किलोग्राम में आर्यन का मुकाबला अफगानिस्तान के शहजादा सफी से हुआ, जिसे आर्यन ने भी 2-0 से जीत लिया। वुशु में तो खिलाड़ियों ने अपना दम दिखाया, लेकिन सॉफ्ट टेनिस के मिक्स डबल में आध्या तिवारी और जैमीना ने ग्रुप चरण में 2 मुकाबले जीते। हालांकि दक्षिण कोरिया से हार के बाद राउंड ऑफ 16 में फिलीपींस की जोड़ी से 2-5 की हार के साथ उनका अभियान यहीं समाप्त हो गया। पूरी जानकारी दे रहे हैं अभिनव पुंशी।
2: Let's talk now about soft tennis in Aichi Nagoya, the Asian Games 2026. And Adhya Tiwari and Jay Meena action में थे इंडिया के लिए और उनका ग्रुप स्टेज मैचेस में पहले मैच में मंगोलिया को हराया कंफर्टेबली। दूसरे मैच में भी जीत मिली आध्या और जय को, उन्होंने हराया कंबोडिया को। मगर जो तीसरा मैच था वो कांटे की टक्कर थी साउथ कोरिया के खिलाफ। उस मैच में हार का सामना करना पड़ा हमारी इंडियन टीम को, मगर हारने के बाद भी साउथ कोरिया के खिलाफ इंडिया फिनिश सेकंड इन द ग्रुप एंड एडवांस करा राउंड ऑफ 16 स्टेज में। एंड राउंड ऑफ 16 स्टेज में जब आध्या और जे अपना 5वां मैच खेल रहे थे दिन का, तो इंडिया और फिलीपींस का फाइनल स्कोर था 2-5, जिससे इंडिया को हार का सामना करना पड़ा और इंडिया एडवांस नहीं कर पाए क्वार्टर फाइनल स्टेज की तरफ। और ऐसा ही था आज इंडिया का प्रदर्शन सॉफ्ट टेनिस में।
3: एशियन गेम्स में आज के मुकाबले खत्म होने के बाद चीन कल की तरह ही मेडल टैली में 23 गोल्ड, 10 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज के साथ टॉप पे बरकरार है। दूसरे पायदान पर मेजबान जापान टोटल 32 मेडल के साथ टिका हुआ है, जिसमें 8 गोल्ड, 12 सिल्वर और 12 ब्रॉन्ज शामिल हैं। वहीं तीसरे पायदान की कमान दक्षिण कोरिया ने 5 गोल्ड, 3 सिल्वर और 15 ब्रॉन्ज के साथ संभाली हुई है। बात करें भारत की, तो भारत 4 रजत और 2 कांस्य की मदद से कुल 6 पदकों के साथ 12वें स्थान पर बना हुआ है।
0: एशियन गेम्स के अगले दिन भारतीय खिलाड़ियों के सामने चुनौतियां भी बड़ी हैं और पदक की उम्मीदें भी। कहीं गोल्ड की जंग होगी, कहीं नॉकआउट मुकाबले और कहीं जीत के साथ अगले दौर का टिकट दांव पर होगा। अब नजरें हैं

0: कल के खेल और भारतीय खिलाड़ियों की अगली रणनीति पर। आप जुड़े रहिए आकाशवाणी के साथ। कल सुबह ठीक 9:30 बजे से आप सुन पाएंगे एशियन गेम्स पर हर घंटे की ताज़ा जानकारी। इसके बाद हम लेकर आएंगे रात को 10 बजे पूरे दिन का लेखा जोखा। अभी के लिए प्रोड्यूसर शाहनवाज खान, एडिटर वंदना भारद्वाज के साथ मैं कविता शर्मा आपसे लेती हूँ अनुमति। नमस्कार।
1: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।